शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव सहमति होने पर हिंसा और अपराध वृत्ति का अभाव होगा तथा हर तरफ मंगलमय वातावरण निर्मित होगा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज ये किन्नी बातचीत करेंगे आज के आमंत्रित मेहमान श्रीमती नीरजा बख्शी के साथ। रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपुरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट एवं निर्देशन आर जे किन्नी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किन्नी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम घर परिवार में, जहां बात होती है रिश्तों की, एहसासात की और उन अनमोल बंधनों की जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। कहते हैं घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार से, अपनापन से और रिश्तों की गर्माहट से। और आज का हमारा विषय है बहनों का प्यारा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती भी है, ममता भी है और सुकून भी। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई खूबसूरत रिश्तों की पहचान है। एक समर्पित होममेकर, एक स्नेहमय माँ और एक संवेदनशील बहन। घर की जिम्मेदारियों को मुस्कुराकर निभाना, बच्चों के लिए छांव बन जाना और रिश्तों को धागे की तरह सहेज कर रखना, ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन जो आज हमारी गेस्ट है उनके पास ये सारे हुनर है। इन सभी भूमिकाओं को उसने सिर्फ निभाया नहीं बल्कि खूबसूरती से जिया है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम घर परिवार में।
2: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरजा बख्शी, मैं जम्मू से हूँ। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और जम्मू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है।
1: आपका हमारे घर परिवार कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। बहनों के इस खास विषय पर आपके अनुभव और आपके एहसास सुनने के लिए हम सब बेहद उत्सुक हैं। घर की दीवारों में जो खुशबू ठहर जाती है वो अक्सर किसी औरत की ममता कहलाती है। रिश्तों को जो चुपचाप सींचती रहती है वही घर की असली ताकत बन जाती है। नीरजा जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती है, आपके हिसाब से इस बात का असली मतलब क्या है? क्या सच में बहनों के बीच एक ऐसा एहसास और जुड़ाव होता है जो शब्दों से परे होता है?
2: जी हाँ किरणी जी, वाकई में बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती हैं। वो न सिर्फ साथ में खेलती कूदती हैं, बल्कि वो साथ में खाती पीती हैं, उठती बैठती हैं, हर छोटा बड़ा काम भी करती हैं। इसके अलावा वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती भी हैं, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा होता है, उनकी आपस की लड़ाई उनको याद नहीं रहती और न ही उनको एक दूसरे के खिलौने छीनने से फर्क पड़ता है। ये ऐसा प्यार है जो बिना किसी मतलब के एक दूसरे से किया जाता है। ये ऐसा प्यार होता है जहाँ माँ की डांट से एक दूसरे को बचाया भी जाता है।
1: नीरजा जी, आपने सही कहा, बहन का रिश्ता शब्दों से नहीं एहसासों से समझा जाता है, शायद इसलिए ये रूह से जुड़ा हुआ लगता है। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है, बचपन में बहन का साथ हमारे स्वभाव, आदतों और सोच को किस तरह आकार देता है? क्या वही बचपन की यादें आज भी इस रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनी हुई है?
2: बचपन में बहन ही सबसे ज्यादा करीब होती है, उसी के साथ खिलौने, कपड़े, जगह सब कुछ शेयर होता है और वही छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह बनती है, पर ये लड़ाइयाँ कभी दूर नहीं करती।
1: आपने सही कहा, बचपन की वही छोटी छोटी बातें बड़े होकर भी रिश्ते को सबसे मजबूत डोर बन जाती है। अब आपसे मेरा अगला प्रश्न है, लोग कहते हैं कि बहन का रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा होता है, आपके अनुसार इस रिश्ते की वो कौन सी बात है जो इसे हर रिश्ते से अलग और खास बनाती है?
2: किरणी जी, आप जानती हैं, दोस्त हम जिंदगी में बाद में बनाते हैं, पर बहन बचपन से साथ होती है। दोस्त को हम अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन बहन पहले से ही उस कहानी का हिस्सा होती है। दोस्त कभी कभी समझता है, पर बहन बिना समझाए सब कुछ समझ जाती है। दोनों खास होते हैं, लेकिन बहन का रिश्ता ज्यादा गहरा और पुराना होता है।
1: सच कहा, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन बहन का रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और गहरा होता है। दोनों रिश्ते हमारी जिंदगी में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपसे मेरा अगला प्रश्न है, जिंदगी की मुश्किल घड़ियों, उलझनों और चुनौतियों में बहन की मौजूदगी क्या मायने रखती है? क्या वो सचमुच में एक ऐसे सहारे की तरह होती है जो बिना कहे समझ ले?
2: आप जानती हैं, जिंदगी में हर इंसान को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ वो अपने दिल की बात बता सके, जिसके साथ वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके और जिस पर वो भरोसा कर सके। इसी तरह बहन के साथ सीक्रेट शेयर करना भरोसे को मजबूत करता है। जब आप अपनी बात बिना डर के कह सकते हैं, रिश्ता गहरा होता है। ये सीक्रेट्स सिर्फ बातें नहीं, एक दूसरे का भरोसा होती हैं। इसी भरोसे से बहन का रिश्ता मजबूत होता है। अब बात है मुश्किलों की। जब दुनिया समझ नहीं पाती, बहन बिना समझाए समझ लेती है। वो बस पास बैठकर भी हिम्मत देती है, कभी शब्दों से, कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से। मुश्किल वक्त में बहन सबसे बड़ा सहारा बनती है।
1: आपने सही कहा, मुश्किल वक्त में बहन का साथ सच में एक हिम्मत जैसा होता है जो संभाल भी लेता है और समझ भी लेता है। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बड़ी बहन बहुत केयरिंग होने के साथ साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि सख्ती के पीछे भी छुपा हुआ गहरा प्यार और जिम्मेदारी होती है?
2: जी हाँ, असल में बात ये है कि स्ट्रिक्टनेस और प्यार, ये दो चीजें अलग है। स्ट्रिक्टनेस इंसान को गलतियां करने से बचाती है और प्यार इंसान को एक दूसरे पर भरोसा करवाती है। बड़ी बहन शायद स्ट्रिक्ट इसलिए होती है क्योंकि उसको घर में जिम्मेदारी का एहसास बचपन में ही पैदा हुआ होता है। वो माँ की तरह हर बात पर नजर रखती है, पर बहन की तरह प्यार भी करती है। उसकी डांट में सख्ती कम, चिंता ज्यादा होती है। बड़ी बहन घर की वो छाया होती है जो बिना कहे सब संभालते रहना चाहती है। कभी टीचर बन जाती है, कभी दोस्त और कभी माँ का रूप ले लेती है। केयरिंग होना उसके दिल की नरमी का एहसास है और स्ट्रिक होना उसकी फिक्र का तरीका है।
1: आपने बहुत सही कहा, बड़ी बहन की सख्ती में भी एक अजीब सी मिठास होती है क्योंकि उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। नीरजा जी, बहुत प्यार भरी बातें हुई, क्या आप संगीत सुनते हैं?
2: जी हाँ, मैं संगीत सुनती हूँ और संगीत से ही तो रूह को सुकून मिलता है।
1: तो फिर चलिए, आप अपना पसंदीदा गीत बताइए।
2: मेरा पसंदीदा गीत है अपने तो अपने ही होते हैं।
1: तो चलिए सुनाते हैं आपका पसंदीदा गीत, आपको और अपने श्रोताओं को।

0: आपसे मेरा एक और प्रश्न है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी बहन बड़ी बहन की बात मानती है, उस पर भरोसा करती है और उसे एक मिसाल की तरह देखती है। इस आज्ञाकारिता के पीछे कौन सा भाव काम करता है?
1: किरणी जी, अक्सर देखा जाता है छोटी बहन शुरू से ही, बचपन से ही माँ के बाद अपनी बड़ी बहन को देखती है। वो हर काम अपनी बहन की निगरानी में करती है, हर छोटी बड़ी जिद अपनी बहन के सामने पूरी करती है। इसीलिए उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहन कभी उसके लिए गलत नहीं सोचेगी, कभी उसके लिए गलत नहीं करेगी और ना ही कभी उसको गलत रास्ता दिखाएगी। यही कारण है कि छोटी बहन अक्सर आज्ञाकारी होती है। बचपन से ही बड़ी बहन को एक मार्गदर्शक की तरह देखती है। उससे लगता है कि वे कह रही है तो यही सच है और उसमें ही उसकी भलाई है। छोटी बहन बहस भी इसीलिए कम करती है क्योंकि उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा भरोसा होता है। इसीलिए उसका आज्ञाकारी होना, बहन के लिए दिल में इज्जत होना और बहन पर विश्वास होना स्वाभाविक है।
0: आपने सही कहा, क्योंकि छोटी बहन का विश्वास ही इस रिश्ते को और खूबसूरत बना देता है। अब आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि बड़ी बहन बहन कम और माँ ज्यादा लगती है, किन बातों में वो माँ जैसी भूमिका निभाती हुई नजर आती है?
1: किरणी जी, आप जानती हैं, बच्चा जब छोटा होता है उसको सही गलत का अंदाजा नहीं होता और माँ अपने दूसरे कामों में व्यस्त होती है और बड़ी बहन अपना हक और अपना फर्ज बखूबी निभाती है। यही वजह है जब बड़ी बहन अपने छोटों को उनकी गलती बताती है और उनको गलत रास्ते पर चलने से रोकती है, तब बड़ी बहन में माँ की झलक दिखाई देती है। वो अगर डांटती भी है लेकिन वो साथ में संभालती भी है। वो अगर उसको कुछ गलत करते देखती है, वो उसको बिल्कुल उससे बताए बिना ही उसको उस गलती से दूर कर देती है। माँ की तरह जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है तो उसे लगता है कि शायद मेरी माँ भी इतने अच्छे से मुझे नहीं संभाल पाती। जब माँ पास ना हो तो बड़ी बहन ही संभालती है और जरूरत पड़ने पर माँ का रूप ले लेती है। बिना कहे और बिना दिखाए वो एक माँ ही बन जाती है।
0: आपने बहुत सही कहा कि कई बार सच में ऐसा लगता है कि बहन बहन कम और माँ ज्यादा होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आज के बदलते दौर, दूरियों और व्यस्त जीवन शैली के बीच भी बहनों का रिश्ता किस रूप में बना हुआ है? क्या आज भी वही अपनापन, वही जुड़ाव महसूस होता है?
1: आज के दौर में जिंदगी पहले से काफी तेज हो गई है। सब अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, फिर भी बहनों का रिश्ता वक्त की कमी से कमजोर नहीं पड़ता। रोज बात ना हो तो भी एक छोटा सा मैसेज और कॉल दिल को सुकून दे देता है। आजकल बहनें एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन गई हैं। दूर रहकर भी पास महसूस करना, यही आज के दौर की बहनों के रिश्ते की खूबसूरती है।
0: आपने सही कहा कि दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, बहनों के बीच की नजदीकियां कभी कम नहीं होती है, क्योंकि आज के बदलते दौर में एक फोन कॉल से हमें लगता है कि हम एक दूसरे के आसपास हैं।
1: किरणी जी, मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं, क्या मैं आपके लिए वो पंक्तियां बता सकती हूँ?
0: जी हाँ, क्यों नहीं।
1: मेरी पंक्तियां इस तरह हैं, किताबों के पन्नों से पाक है फितरत उसकी, हर लफ्ज में बहती है सिर्फ मोहब्बत उसकी। किरणी की लेखनी में दिखता है बहनों का दुलार, सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार। सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार।
0: बहुत बढ़िया, आपने मेरे लिए भी शायरी बोली है। ये खाली शायरी नहीं है बल्कि तेरे लफ्जों में मुझे अपनी परछाई नजर आती है। तेरी अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं, मेरे लिए वो बचपन की यादें भी है। तू शायरी सुनाए और मैं चुप रहूं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी आवाज का हिस्सा है। शायरी तो बहाना है, असल में तो मुझे रुलाना चाहती है। शायरी तो बहाना है, असल में तो मुझे रुलाना चाहती है। तेरे लफ्ज का असर देखो, दिल को सीधा बचपन में ले जाती है।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। घर परिवार कार्यक्रम जारी है, अब हम इसके अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। मिर्जा जी, अभी आपने जो शायरी बोली, आपने मुझे बहुत ज्यादा भावुक कर लिया। चलिए अब आगे। मिर्जा जी, घर संभालते हुए हर रोज ये सोचना पड़ता है कि परिवार को कुछ ऐसा खिलाया जाए जो सेहतमंद भी हो, टेस्टी भी हो और ज्यादा वक्त भी ना ले। ऐसा कौन सी रेसिपी है जो आप अक्सर बनाती है, जो झटपट तैयार होती है और पौष्टिक भी होती है?
1: मैं अक्सर वेजिटेबल ओट्स चिल्ला बनाती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है और बनाने में भी आसान है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, ओट्स का पाउडर, 2 चम्मच बेसन, 2 से 3 चम्मच दही, बारीक कटी हुई गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया। स्वाद अनुसार इसमें नमक चाहिए, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा अदरक। थोड़ा पानी डाल के इसका गोला बनाना है। फिर सब चीजों को मिलाकर डोसा जैसा गोला बना लेना है। गर्म तवे पर हल्का सा तेल लगाकर इस गोले को फैला देना है। दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेक लेना है। इससे दही या हरी चटनी के साथ गरम गरम खाने का स्वाद कुछ अलग ही आता है।
0: बहुत बढ़िया है ये रेसिपी, वाकई एक तो हेल्दी भी है और झटपट बनने वाली भी। आगे मिर्जा जी, बदलते मौसम में अक्सर सर्दी, खांसी और सोर थ्रोट की परेशानी हो जाती है। घर संभालते हुए आप जरूर कोई ऐसा घरेलू नुस्खा अपनाती होंगी जो आसान भी हो और असरदार भी। हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएंगी जो तुरंत राहत दे सके?
1: मैं अक्सर हल्दी और शहद का नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ, जो सर्दी, खांसी और गले की खराश में काफी राहत देता है। इसको बनाने के लिए आपको 1 चम्मच शहद चाहिए और 1/4 चम्मच हल्दी चाहिए। इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर दिन में 2-3 बार धीरे धीरे चाट लीजिए।
0: बहुत बढ़िया। वैसे भी हल्दी में सूजन कम करने की ताकत होती है और शहद गले को नरम करती है। ये नुस्खा इम्यूनिटी बढ़ाता है और सोर थ्रोट में भी जल्दी सुकून देता है। आखिर में मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको बहन शब्द को एक खूबसूरत एहसास, एक परिभाषा या एक रूपक में डालना हो तो आप उसे किस तरह बयान करेंगी?
1: किरणी जी, मैं बहन को एक ऐसे एहसास के रूप में बयान करूंगी जो जिंदगी भर साथ चलता है। बहन वो होती है जो बचपन से आज तक आपके हर रूप को जानती है। वो डांट भी सकती है, हंसा भी सकती है और जरूरत पड़ने पर संभाल भी लेती है। पास हो या दूर, उसका प्यार हमेशा दिल के करीब रहता है। किरणी जी, मैं इसी एहसास को कुछ पंक्तियों के रूप में बयान करना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आगे बढ़ूं?
0: जरूर जरूर, आप अपनी पंक्तियाँ हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाइए।
1: रिश्तों की भीड़ में सबसे प्यारा नाम है बहन। घर की रौनक, घर का सुकून, घर की शान है बहन। मुश्किल में जो सबसे पहले साथ खड़ी मिलती है, हर दर्द की पहली पहचान है बहन।
0: बहुत ही अच्छी लाइनें, एक तो हार्ट टचिंग है और बहुत ही सुकून देने वाली लाइनें हैं।
1: किरणी जी, मैंने आपके बहुत से सवालों का जवाब दिया। मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकती हूँ?
0: जरूर, आप अपना सवाल पूछिए।
1: किरणी जी, जिस तरह मुझे सारी उम्र अपनी बहन की एक याद मेरे दिल दिमाग में रही, क्या कोई ऐसी याद है जो आपके दिल दिमाग में भी है?
0: जी हाँ, एक ऐसी याद है जो मैं हमेशा याद करती हूँ। क्यों? कारण उसका ये भी है, क्योंकि जो मेरी बहन है वो मेरे से छोटी है, मगर छोटी होते हुए भी उसने एक बार, मतलब एक बार के कई बार, मेरा जो ध्यान रखा, जो मेरा ख्याल रखा, एक बड़ी बहन की तरह। एक बार का मुझे वाकई याद है कि मैं काफी बीमार हो गई, मुझे फीवर था, तो क्योंकि हम कश्मीर में रहते थे, वहां सर्दी बहुत थी, तो वहां ठंडा पानी तो पी नहीं सकते थे, तो उन दिनों हमारे घर में गैस नहीं थी। वो रात के 1 बजे 2 बजे उठती थी, वो चूल्हे पर गर्म पानी करती थी मेरे लिए, मुझे चाय पीनी होती थी, वो पूरी पूरी रात मेरे लिए जागती थी। वो कम से कम 4-5 दिन का समय हुआ गया जब तक मैं ठीक हो गई, वो रात को नहीं सोती थी। वो हमेशा जब तक मैं ना सोती थी वो सोती नहीं थी, और ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि कभी कभी वो छोटी होकर भी मेरी बड़ी बहन बन जाती है, और ये याद हमेशा मुझे याद आती है। जब भी मैं बीमार होती हूँ मुझे वो चीज याद आती है, वो मेरा कितना केयर करती थी। और मैं चाहती हूँ कि बहनों का प्यार ऐसा ही बना रहे और हमेशा एक मिसाल बने कि बहनें ऐसी होती है।
1: तुमने ये किस्सा सुनाकर मेरा दिल भर दिया। सच तो ये है कि तुम्हारा मेरे लिए लगाव तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। पर क्या तुम्हें पता है मेरे पास भी एक ऐसी याद है जिसने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया कि मेरी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरी बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं रहा। जब मैं कॉलेज की जल्दी में खुद का ख्याल रखना भूल जाती थी, वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती थी। वे मेरे हाथ में खाना पकड़ाकर मेरे बाल बनाना लगती। उनका वो प्यार भरा रवैया और ये जिद के भूखे पेट नहीं जाना आज भी मेरे दिल का करीब है। वो सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरे बचपन की सबसे मजबूत डाल थी। किरणी जी, मैंने कुछ ऐसी लाइनें उनके बारे में लिखी हैं, मैं थोड़ा वो बताना चाहती हूँ। वो बचपन की फिक्र, वो बहन का दुलार, मैं भूल जाती थी खुद को पर उन्हें था याद हर बार। न जाने दिया कभी भूखे पेट मुझे दहलीज के पार, कभी कंघी से बाल सवारे तो कभी निवालों से ढेर सारा प्यार।
0: आज हमारी जो गेस्ट थी, आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहनों के प्यार के ऊपर इतने अच्छे अच्छे हमें उत्तर दे दिए। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का समय खत्म होता है। श्रोताओं, आज की इस प्यारी सी बातचीत में हमने जाना कि बहन का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि जिंदगी का एक सुकून है, एक ऐसा साथ जो वक्त दूरी और हालात से परे होता है। बहन वो होती है जो हमारी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द भी पढ़ लेती है और हमारी खामोशी में छुपे सवाल भी सुन लेती है। रिश्तों की भीड़ में जो सबसे खास होता है वो बहन का प्यार ही तो होता है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वो बस दिल में महसूस होता है। सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहती हूँ, आज अगर आपकी भी कोई बहन है पास या दूर, तो इस कार्यक्रम के बाद उसे एक बार जरूर याद कीजिएगा, उसको फोन कीजिए, क्योंकि बहनें जिंदगी में बार बार नहीं मिलती, वह किस्मत से मिलती है। इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं किरणी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।
1: मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती नीरजा बख्शी। कार्यक्रम रिकॉर्ड एवं एडिट किया भरत सोपोरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

लघु कथाओं की श्रृंखला में आइए आज एक और प्रस्तुति लेकर आए हैं। आपको तो पता ही होगा कि आप सुन रहे हैं रेडियो दस्ता हम सफर जिंदगी का 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। आइए सुनते हैं आज की एक नई प्रस्तुति, थोड़ी अलग हटके, उन दोस्तों के लिए जो नारी शक्ति को कहीं ना कहीं कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन नारी शक्ति वास्तव में कमजोर होती नहीं है। साहब, वाइफ ने हस्बैंड को मैसेज किया कि ऑफिस से लौटते सब्जी लेते आना, और हाँ पड़ोसन ने तुम्हारे लिए हेलो कहा है। कौन सी पड़ोसन? अरे कोई नहीं, मैंने केवल इसलिए मैसेज के अंत में पड़ोसन का नाम लिख दिया ताकि श्योर हो सकूं कि तुमने मेरा पूरा मैसेज पढ़ लिया है। बात यहां खत्म नहीं, यहां शुरू होती है। हस्बैंड ने भी मैसेज दिया अपनी पत्नी को, लेकिन मैं तो खुद पड़ोसन के साथ हूं, तुम किस पड़ोसन की बात कर रही थी? हैं? कहां हो तुम? हस्बैंड ने कहा सब्जी बाजार के पास हूं, तुम वहीं रुको, मैं आती हूं वहीं पे अभी। 10 मिनट में सब्जी बाजार पहुंचकर वाइफ ने हस्बैंड को मैसेज किया, अब बताओ कहां हो तुम? हस्बैंड ने कहा मैं तो ऑफिस में हूं, अब तुम्हें जो सब्जी खरीदनी हो खरीद लो। आप सोच रहे होंगे यहां से बात निपट गई, लेकिन निपटी नहीं, यहां से तो लिपट गई। और लिपटी भी कैसे? वाइफ ने गुस्से में पैर पटकते हुए मैसेज दिया कि मैं तो गुस्से में टेम्पो पकड़कर आ गई थी, मेरा तो पर्स भी घर पर ही रह गया है, सब्जी तो दूर, टेम्पो वाले का किराया भी कहां से चुकाऊं, प्लीज जहां पर भी हो जल्दी आ जाओ। पति ने कहा बेवकूफ, पर्स तो लेकर आना चाहिए था ना। ठीक है मैं आ रहा हूं, कहां हो? वाइफ ने जवाब दिया घर पर ही हूं। हाँ मेरी पसंद की सब्जी लेकर ना सीधे ही घर आ जाना। तो भाई बात कहने की है कि नारी से तो भगवान भी जीत नहीं पाए, आप और मैं तो चीज ही क्या है, राधे राधे राधे राधे।

0: دوچو بوزان اف ام 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت
1: जब देखो पढ़ाई पढ़ाई थोड़े घर के काम में हाथ बटाना भी सीख ले के करेगी इतना पढ़ के।
2: ITI में दाखला लूंगी और फिर एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगी।
1: इतना आसान हो गया के
2: माँ लगता है आपको पता नहीं कि महरी हरियाणा की ITI में दाखले शुरू हो गए हैं, जहाँ पे 8वीं 10वीं और 12वीं पास युवा राज्य की 197 सरकारी और 180 प्राइवेट ITI के एक और 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इन ITIs में 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
1: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
3: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेव या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सुक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
4: आज का जो ललवाक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमारे को जीवन को जीने की कला के बारे में बताता है। कश्मीरी में ये ललवाक ललदित कहती है, खन खन करान कुन्नो वातक, खन खन करान कुन्नो वातक, नखन गसक अहंकारी, सुमई खे माल्य सुमई आसक, स्वमिखन मुसरनई बरंदेरी। मतलब ललदेत कहती है कि हम जीवन में या तो भोग विलास में इंडल्ज हो जाते हैं या हम त्याग, यानी जीवन की डाइकोटमी है, या तो एकदम जीवन में भोग, कंज्यूमरिज्म, उपभोगता, स्वार्थ इसमें इंडल्ज हो जाते हैं, या एकदम ऑपोजिट हम जीवन में त्याग, संयम, तप, उपवास या दान इस और इंडल्ज हो जाती है। मतलब जीवन की एक डाइकोटमी है, या तो आप एक तरफ है या एक तरफ है। परंतु भोग की तरफ जब व्यक्ति जाता है तो भोग की तरफ जाते जाते उसे कितना भी वो जीवन में पाले वो अतृप्तता हमेशा रहती है, वो डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहती है। आप एक चीज ले लो तो आपको दूसरी चीज की कामना हो जाती है, आपको दो चीजें मिल जाए तो आपको चार चीजों की कामना हो जाती है। यानी लाइफ का जो पूरा वर्तुल है, वो जो सर्कल है, वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कमी हमेशा जीवन में खलती रहती है। आप जिंदगी के टॉप मुकाम पे भी पहुंच जाएं तब भी आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कमी महसूस होती रहेगी। यानी जितना पाओ उतना ही और चाहो, यानी पाओ कभी आपको चाहत खत्म नहीं करता। और दूसरी तरफ जब हम त्याग का जीवन अपनाते हैं, जब हम सैक्रिफाइस का जीवन, जब संयम का जीवन अपनाते एकदम ऑपोजिट तप का जीवन अपनाते हैं, उपवास का जीवन अपनाते हैं, और साथ ही में हम लोग दान का जीवन अपनाते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन लाता है, हमें अहंकार भर देता है। एक तरफ से भोग हमारे जीवन में लालसा और लोभ भर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वाला जीवन हमारे जीवन में अहंकार भर देता है। हम इस बात के अहंकारी हो जाते हैं कि हम कुछ दान कर रहे हैं, हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। तो दोनों चीजों के बारे में लद्दत कहती है कि दोनों चीजें सही रास्ते नहीं है। वो कहती है सोमई के माले सोमई आसक, यानी सोमई मतलब बैलेंस के साथ जीवन में रह, यानी न ज्यादा खा न ज्यादा त्याग कर। यानी हमारे यहाँ पे एक शब्द है वॉलंटरी पॉवर्टी, यानी उतना ही लो। वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब गुर्बत नहीं है, वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब है उतना ही जीवन में लो जितने जीवन में आपको आवश्यकता है। होर्डिंग मत करो, एक्यूमुलेशन में मत जाओ। तो ये जो संतुलन वाला शब्द लल्लित इस्तेमाल करती है, सोमई खेमाले सोमई आसक, यानी ये संतुलन वाला जो शब्द है इसमें भोग त्याग और ये एक तरफ इसकी बिल्कुल कमी, और दूसरी तरफ सैक्रिफाइस यानी बैलेंस। यानी जिस समय हम बैलेंस को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जब हम लोग न ज्यादा खाना और न ज्यादा त्याग करना, एक बैलेंस जीवन जितनी आवश्यकता है उतने में चलते हैं, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन की एक क्रांति बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि न हम ज्यादा भोग दिखावे में, न तनाव में, न बर्नआउट में, और ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन। तो होता क्या है, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। जब आप बैलेंस में चलते हो, जब आप बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस में चलते हो कि मुझे न ज्यादा चाहिए न मुझे ज्यादा त्याग करने की आवश्यकता है, तो आप देखते हैं कि हमें एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक आंतरिक जॉय मिल जाता है, हमें भीतर से एक मुक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है, एक फ्रीडम ऐसी होती है जो हमें सच्चा सुख देती है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

जिंदगी क्या इसी को कहते हैं? कतरा कतरा बह जाए और तुम देखते रहो, सुलगते रहो, सिसकते रहो, मिटते रहो, फना होते रहो। आज थर थराती रही मेरी रूह, रूह से मिलकर, इसलिए गीली हुई मेरी आंखें,

देखी। मौसम खजां के आते आते फिर रिश्ते जोड़े। तुम्हारे उदास चेहरे की तस्वीर खींची, घर की कच्ची दीवार पे सजाई, टपकती बारिश की बूंदों से बचा के रखा। तेज हवाओं के झोंकों से महफूज रखने की कोशिश भी की। सुना है तस्वीरें अक्सर बोलती हैं, काश ये तस्वीर आज मेरे लिए बोलती।

दिल तो है अपने पास, पर तुम्हारे बिना है ये बहुत उदास। ये दिल लगता नहीं तुम्हारे बगैर, हम क्या करें। आज दिल में उमड़े हैं फिर से सोए हुए जज्बात, एक बस तुम्हें याद करके। दिल मासूम है, भटकता है, बहकता है और बेइंतहा तुम्हें याद करता है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए शायद तुम लौट आओगे, इस दिल का दर्द मिटाने के लिए।

इस कारवां में छूट गए मेरे अपने, अपने जो अब पराए हो गए। जीवन के पतझड़ के मौसम की तरह यूं ही गुजरता रहा। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी। अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे। प्यार के मौसम देखे भी और खोए भी। अब हमारे अपने रास्ते ही अनदेखे।

ये वो एहसास है जो अक्सर मेरी दहलीज पे दस्तक देकर यूं ही चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मैं जानता हूं सर्द मौसम की ठंडी हवाएं तुम्हें छूकर मेरी गली से गुजरती हैं शबरोज। मेरी अनदेखी अनसुई इन रास्तों की पहचान अब कौन कराए, जबकि इन अंधेरी राहों पे चलते

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहेंगे हमारे मेहमान राजेंद्र रहबर। आप किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं। रहबर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया जी।
0: आपके कलम से निकली एक नज्म है, तेरे खुशबू में बसी खत।
1: मैं जलाता
0: का। हाँ बिल्कुल, हम अपनी बातचीत इसी नज्म से शुरू करते हैं।
1: शुक्रिया जी।

0: जाहिर है कि जब इस तरह के गाने सुनते हैं, जैसे ये गाना अभी आपने आपकी चॉइस पे हमने सुनाया, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, तो इस तरह का आपका मिजाज है शेर लिखने का। कुछ किताबें होंगी जिनमें इस तरह के शेर दर्ज हैं?
1: हाँ, मेरी 7-8 किताबें छपी हैं। पहली किताब तो थी मेरी आगोश गुल, वो एक तज़किरा था शिमला हिल्स के 22 उर्दू शायरों का। उसमें मैंने जिक्र किया है, उनका कलाम शाया किया है, उनके फ़ोटो शाया किए हैं, उनके हालात ज़िंदगी शाया किए हैं। उसके बाद फिर 1962 में मेरा अपना मजमूआ कलाम कलस के नाम से शाया हुआ था। उसके बाद 75 में मल्हार नाम से मेरी एक किताब देवनागरी स्क्रिप्ट में शाया हुई थी। फिर 78 में मेरी किताब और शाम ढल गई के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे बिहार उर्दू अकेडमी ने अवार्ड दिया था। और फिर 97 में मेरी एक किताब ज़ेब सुखन के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब ने बेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ द ईयर 1997 करार देते हुए मुझे अवार्ड दिया था। उसके बाद मेरी किताब शाया हुई, उसका नाम था तेरे खुशबू में बसे खत। अच्छा, ये तेरे खुशबू में बसे खत नाम मैंने कैसे रखा, ये भी एक दिलचस्प वाक्या है कि टी सीरीज ने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एक कैसेट निकाली, उसका नाम रखा उन्होंने तेरे खुशबू में बसे खत। उसमें मेरी पोएम भी है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिर उसके बाद HMV ने, सारे गामा ने एक निकाली एल्बम, उसका नाम भी रखा तेरे खुशबू में बसे खत। तो फिर मेरा मजमूआ कलाम छपने वाला था उन दिनों, मैंने भी नाम रख दिया तेरे खुशबू में बसे खत। तो उसके बाद फिर 2008 में मेरी एक किताब याद आऊंगा, हिंदी और उर्दू दोनों ऑडिशन हैं उसके, वो छपी है।
0: आमतौर पे हम कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आप इस बुलंदी पे हैं, आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे?
1: मेरी जो अहलिया हैं वो शायर तो नहीं है, भजन वगैरह गाती
0: लेकिन
1: रहती
0: आपको हैं। सपोर्ट तो करती होंगी।
1: हाँ, मेरे मिलने वाले जो आते हैं शायर लोग बड़ी तादाद में आते
0: यहाँ
1: हैं।
0: यहाँ पे आपने एहतियात बरतना होगा क्योंकि कहीं वो नाराज ना हो जाएं।
1: हाँ, नहीं, उनके हक में उनको चाय वगैरह पिलाने की जिम्मेवारी मेरे दोस्तों को नहीं होती।
0: रहबर साहब, कभी आपको गुस्सा आता है?
1: बहुत कम। कहते हैं जो दरवेश लोग होते हैं ना, वो अपना गुस्सा अपनी जान पर ही निकालते हैं, तो मैं भी शायद ऐसा ही करता हूँ।
0: जी, उम्र के इस पड़ाव में हैं आप और यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी क्या कुछ काम हो रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है?
1: जो नज़म मैंने कहनी है वो अभी नहीं हुई है शायद, तो एक शेर भी मेरा इस तरफ इशारा करता है। वो शेर यूं है, सुनने को जिसे गोश बार आवाज़ है दुनिया, सुनने को जिसे गोश बार आवाज़ है दुनिया, वो गीत अभी साज के पर्दों में छुपा है।
0: जी,
1: तो उम्मीद रखनी चाहिए शायद वो गीत भी कभी साज के पर्दों से बाहर आए। तो मेरी आमतौर पर ये आदत है कि मैं सुबह के वक्त 3 बजे 3:30 बजे उठ के लिखता हूँ, और जो चीज़ उस वक्त लिखी जाती है वो बहुत अच्छी होती है, और जो चीज़ लिखने की तमन्ना है वो किस वक्त बाहर आ जाएगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो शायराना तबीयत या परमात्मा के हाथ में ही है ये सारी बात।
0: जी जी जी, आपका कोई मनपसंद शेर होगा जो आप यहाँ कहना चाहेंगे, कोई आपकी?
1: पिछले दिनों मैंने एक अजीब रंग में गजल कही है, जिस रंग मैंने आज तक नहीं कही, यानी हास्यरस में। उर्दू शायरी संजीदा शायरी होती है आमतौर पर, और मैं भी संजीदा शायरी ही लिखता रहा हूँ, लेकिन एक मजाया नज़म पता नहीं कहाँ से गजल उभर के आ गई पिछले दिनों, बिल्कुल नई है, कि दोस्तों से फरेब खाया कर और फिर दोस्ती निभाया कर। दूसरा शेर है कि हो के दिन भर के काम से फारिग शाम को मैकदे भी जाया कर।
0: क्या बात,
1: ये मशवरे हैं इसमें, गलत मशवरे ज्यादा है। हो के दिन भर के काम से फारिग शाम को मैकदे भी जाया कर, और जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़ कर नहाया कर।
0: क्या बात है
1: जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़ कर नहाया कर। एक शायर को आज मैंने कहा, शायरों को आदत होती है जबरदस्ती शेर सुनाने शुरू कर देते हैं
0: जबरदस्ती।
1: हमारे एक शायर दोस्त से, प्रोफेसर बिमल कृष्ण अश्क, वो कहा करते थे, लो रैबर भाई 5 गजलें सुनो, तो 5 गजलों के लिए वो बुक कर लेते थे। तो ये शेर उसी तरह इशारा करता है कि एक शायर को आज मैंने कहा, बिन कहे शेर मत सुनाया कर, और देख कर राह में हसीनों को, راستے سے بھٹک نہ جایا
0: کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے.
1: اور ایک شعر اور یاد آ گیا اس کا مجھے, وہ بھی سن لیجئے. کہ سچے دل سے تمہیں دعا دیں گے, سچے دل سے تمہیں دعا دیں گے, ہم فقیروں کو کچھ کھلایا کر.
0: کیا بات ہے. جی جی جی. آپ کی نظر میں عورت کیا ہے ایک تخلیقار ہونے کے ناطے؟
1: اردو شاعری جو ہے, جہاں تک اردو شاعری کا تعلق ہے, میں تو اردو سے ہی وابستہ ہوں اور اردو ہی کا خادم ہوں. اردو کا مزاج جو ہے یہ لڑکپن سے عاشقانہ رہا ہے اور ہے اور رہے گا. اگر یہ رومانٹک شاعری کو ہٹا دیا جائے اردو شاعری میں سے, تو میرا خیال ہے باقی جو ہے وہ اتنا اپیلنگ نہیں رہ جاتا. اس لیے عورت کا ذکر ہمارے شعروں میں اکثر ہوتا ہے, اور ہمارے تمام بڑے شاعروں نے رومانٹک شعر لکھے ہیں, اور غالب ذوق مومنٹ سے لے کر آج تک بھی
0: بالکل بالکل
1: لکھتے آ رہے ہیں.
0: اور مجھے لگتا ہے کہ کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے اس طرح کے شعر.
1: یہ جو رومانی شاعری ہوتی ہے الٹیمیٹلی یہی زندہ رہتی ہے,
0: کیونکہ آپ کے جو جتنے بھی آپ کی لکھائی ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی اس طرح کا ذکر ہے, کہیں کہیں جگہ پہ ملتا ہے ہم کو.
1: یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر وقت انسان کے دل میں محبت کا جذبہ قائم رہتا ہے, وہ کسی شکل میں بھی ہو, تو یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہی ہے. لیکن شعر کو پڑھتے وقت آپ اسے چاہے جنسی محبت کی طرف لے جائیں یا پرماتما کی محبت کی طرف لے جائیں, دونوں طرف ان کے میننگ نکلتے ہوتے ہیں عام طور پر.
0: جی جی جی. ایک تو جگجیت سنگھ صاحب نے آپ کی نظم کو اپنی زبان, اپنی میٹھی سریلی آواز دی, اس کے علاوہ کسی فنکار سے آپ کا کوئی کلام؟
1: انورادھا پوڈوال نے گایا ہے, اور ایک ناروے میں رہتے ہیں گائک جہان دتا ان کا نام ہے, انہوں نے میری ایک غزل گائی ہے. وہ اس کا نام غزل یوں ہے کہ بس چند ہی دنوں کے تھے ڈیرے چلے گئے, خانہ بدوش لوگ سویرے چلے گئے, ہاتھوں میں اپنے جال سنہری لیے ہوئے گہرے سمندروں کے مچھیرے چلے گئے, کچھ مہ کدے کی سمت گئے جھومتے ہوئے, کچھ من چلے فقیر کے ڈیرے چلے گئے. یہ غزل انہوں نے گائی ہے. اس کے علاوہ یہ پٹھانکوٹ میں بڑے مشہور ایک گائک رہتے ہیں کلدیپ رائے, وہ بھی میرا کلام گاتے ہیں, تین چار چیزیں گاتے ہیں وہ میری, آگے ان کے شاگرد بھی گاتے ہیں.
0: جی جی جی. آپ سے کافی لوگ انسپائر ہوتے ہیں, کیا اس طرح کا آپ نے کوئی آگے رکھا ہے کہ کوئی اسکول یا کوئی اٹینڈ کریں گے جہاں پہ لوگ آپ کے پاس سیکھنے آئیں؟
1: ایسے ہے کہ

0: हमारी सुनने वालों को
1: हाँ जी,
0: हम पेश करें।
1: लग जा गले, ये लता मंगेशकर जी का
0: जी,
1: है लग जा गले।
0: ये गाना बड़ा शानदार है, सुरी लगाना है।
1: हाँ जी,
0: तो ये गाना आपको पसंद है?
1: हाँ जी,
0: सुनना चाहेंगे?
1: जरूर सुनना चाहूँगा, और मेरे जो श्रोता हैं वो भी सुनेंगे तो खुश होंगे इसको।

0: चलते चलते चूंकि हमारे इस प्रोग्राम का समय मुकम्मल हुआ चाहता है, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे जो आजकल के शायर हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई खास पैगाम होगा आपकी तरफ से?
1: उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो छंद शास्त्र ज़रूर सीखें। खुली शायरी भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन इतनी नहीं जितनी छंदबद्ध शायरी को पसंद किया जाता है। उसमें जब रदीफ और काफ़िया आते हैं, टणकता हुआ काफ़िया हो जैसे ये मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, ख्वाब इसमें काफ़िया है, जैसा है रदीफ, मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, तुम्हारा हुस्न महकते गुलाब जैसा है। तो ये जब काफ़िया और रदीफ आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, और खुली कविता हो तो इतनी प्रभावित नहीं करती सुनने वालों को, और जो शायर लोग लिखेंगे छंद शास्त्र के अंदर रह के उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है दूसरों की निस्बत।
0: जी जी, ड्राइवर साहब आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, आप हमारे यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके हैं काफ़ी मशकूर, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी अंक 4। आज की मेहमान है कवित्री सविना वर्मा। प्रस्तुत करेंगे भरत सोपोरी।

0: आप सभी का स्वागत करता हूं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। आज आपका ये रेडियो दोस्त भारत सोपोरी लेके आया है शेरो शायरी की महफिल कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 4 में। उम्मीद है कि आज के आमंत्रित मेहमान आपके लिए जो कविता पाठ करेंगे उससे आप अपने जीवन के साथ जुड़ा पाएंगे, क्योंकि संघर्ष से तब के जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो अपने कविताओं से और अपने काम से आपको सराबोर करते हैं। आइए आपके साथ रूबरू करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान और स्वागत करते हैं इन पंक्तियों से। स्वागत करता हूं अतिथि देवो बाबा, कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा। आज के आमंत्रित मेहमान हैं सवीना वर्मा। सवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो में।
1: भारत जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, सभी सुनने वाले को नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 4 लाइनों से अपना आगाज करूंगी। मेरी जिंदगी एक पहेली रही है, मेरी जिंदगी एक पहेली रही है, उदासी मेरी बस सहेली रही है, यूं तो बहुत दोस्त थे साथ अपने, मगर ये सभी तो अकेली रही है, मगर ये सभी तो अकेली रही है।
0: क्या बात। हम सवी जी और हमारी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई है। कृपया आप अपने बारे में एक मुख्तसर सा परिचय दें ताकि श्रोताओं से आप परिचित हो जाएं।
1: जी, मेरा जन्म चंडीगढ़ में ही हुआ और चंडीगढ़ में ही शिक्षा दीक्षा हुई। बहुत ही खूबसूरत माहौल हुआ करता था चंडीगढ़ का उन दिनों, आज तो बहुत ज़्यादा रश हो गया। उन दिनों बहुत शांत सड़कें हुआ करती थी, झील का किनारा हुआ करता था शांत। और चंडीगढ़ में जब हम गए तो बहुत छोटी थी मैं, करीब 2 महीने की, तो मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। बड़ी संघर्षों के साथ मेरी मम्मी ने हमारी परवरिश की।
0: वैसे भी कहा जाता है कि जो माँ होती है वो हम सबको जोड़ के रखती है।
1: जी, वही मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जरूर पिताजी मेरे पूरे हो गए थे, लेकिन परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हमारी माँ ने हम तक पहुँचने नहीं दी। उनके बारे में यही मैं आज भी सोचती हूँ कि वो उन्होंने कैसे किया होगा। तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हम तक नहीं पहुँचने दी, हालांकि उन्होंने, अब सोचती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशानियाँ देखी होंगी, देखी। आज मुझे जब याद आता है उनके बारे में तो सोचती हूँ मैं कि बहुत परेशानियाँ उन्होंने झेली, हम बहुत छोटे छोटे थे।
0: सवी जी, आपका जीवन कैसा रहा है जब आप किशोर अवस्था में थे? क्या शेरो शायरी का माहौल था घर में?
1: जी, मेरे भाई उस वक्त, हालांकि वो भी बहुत छोटे थे, वो लिखा करते थे
0: जी,
1: गाया करते थे
0: जी।
1: अपनी पार्टी थी उनकी, जागरण पार्टी थी उनकी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी, जगराते किया करते थे उस वक्त वो। और बहुत ही छोटी उम्र में अंबाला में भी उन्होंने प्रोग्राम किया काका बल्ली के नाम से।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, वैसे बलराज बल्ली नाम है उनका, वैसे पहले गुरु मेरे वही हैं
0: जी।
1: खुद बहुत लिखा करते थे, बहुत अच्छा गाया करते थे। एक फिल्म आई थी दारा सिंह की, भक्ति में शक्ति
0: जी,
1: उसमें उन्होंने काम भी किया। कई फिल्मी हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया चंडीगढ़ में उन्होंने।
0: अच्छा।
1: तो शायद मैं उनको देखती थी और उनके जैसा बनने की कोशिश करती थी
0: जी।
1: लेकिन ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें इजाजत नहीं थी कुछ भी करने की। हम स्टेज शो देखा करते थे, स्टेज पे जाया करते थे, गाने सुना करते थे, प्रोग्राम्स देखा करते थे, लेकिन उसका हिस्सा बनने की इजाजत हमें नहीं थी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा।
0: तो घर में इस तरीके का माहौल था जहाँ संगीत भी चलता था, सब कुछ चलता था।
1: हाँ जी।
0: तो ऐसा क्या कारण था कि जो आप नहीं उसका हिस्सा बन पाए?
1: बस उस वक्त लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था।
0: अच्छा, ऐसा माना जाता था कि शायद ये लड़कियों के लिए सही नहीं है।
1: हाँ जी, मैं लिखा भी करती थी तो बस छुप छुप के लिखा करती थी, लिख के कहीं छुपा दिया, कभी वो मिला ही नहीं कहाँ गया, कभी फाड़ दिया कुछ। वो बहुत छोटी उम्र होती है और कुछ भाव मन के उमड़ घुमड़ के कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते
0: जी,
1: खासकर अपने बहन भाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते
0: जी।
1: जो कि आजकल बहुत आसान हो गया, बच्चे सब कुछ अपने माता पिता को
0: इजिली
1: बता देते हैं
0: जी।
1: उस वक्त नहीं था ऐसा माहौल, तो शायद मैं सोचती थी कि जो मैंने लिखा है वो मेरे भाई को पसंद नहीं आएगा। मेरी माँ को पसंद नहीं आएगा, मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, तो मैं छुप छुप के लिखा करती थी और कहीं छुपा दिया करती थी। कई बारी कोई पूछता था क्या लिखती है, तो मैं फटाफट फाड़ दिया करती थी उसे,
0: ताकि जो आपने लिखा है वो
1: कोई और ना पढ़ ले।
0: वो और ना पढ़ ले।
1: हाँ जी, तो कई बार मैं फाड़ दिया करती थी, कभी छुपा के रख दिया, कुछ डायरियां गुम भी गई इसी वजह से। तो बस ये बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं दिखा नहीं सकती थी वो किसी को। हालांकि मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, काफी अभी कुछ ही समय पहले मेरे भाई साहब का इंतकाल हो गया, उससे कुछ समय पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम शादी से पहले कुछ लिखा करती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, तो क्या लिखती थी? तो मैंने कहा भाई तुम लिखने नहीं दिया करते थे, क्या आप सुनोगे? इस वक्त सुनोगे? अब मैं भी माँ बन चुकी हूँ।
0: जो आपने तब लिखा है?
1: जब तब लिखा था।
0: ओके।
1: हाँ जी, तो उसने कहा, पता नहीं किस मूड में था वो, तो उसने बोला हाँ मैं सुनूंगा, कुछ सुना मुझे।
0: ठीक है।
1: और बड़े ही उस वक्त मुझे गौरव फील होता है इस वक्त, वो मेरा क्योंकि पहला गुरु वही था
0: जी।
1: तो जब मैंने उसे अपना सुनाया, लिखा हुआ अपनी कुछ गजलें सुनाई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अभी कहते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कि वो मेरे पैर पकड़ के बहुत रोया। हालांकि मैं उससे बहुत छोटी हूँ, मैं उससे कम से कम 7 साल छोटी हूँ, वो मेरे पांव पकड़ के इतना रोया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तेरा लिखा हुआ उस वक्त पढ़ा नहीं, क्योंकि वो गजलें गाया करता था, लिख के खुद भी गजलें गाया करता था। वो कहने लगा कि आज उसने गाना वाना छोड़ दिया था, तो उसने कहा काश मैं ये गजलें तेरी पढ़ लेता तो मैं गाता इसको, तो तू और मैं कहां तक पहुंच जाते। तो उस दिन बहुत रोया, बहुत रोया। तो मुझे लगा मेरा पहला वार तो मुझे यही मिला,
0: जो सबसे बड़ा इनाम है,
1: जो उन्होंने स्वीकार कर लिया इस चीज को, तो मुझे ये लगा कि सबसे बड़ा इनाम मुझे तो ये मिल गया।
0: सभी जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कवि कवित्रियों को मैं जानता हूँ, और जो आपका जीवन का सफर है वो सबसे अलग रहा है। अलग इसलिए रहा है कि जब हमारे पास कोई क्षमता होती है, कोई कैपेबिलिटी होती है
1: जी।
0: कोई कला हम में होती है, तो पेरेंट्स या जो परिवार के सदस्य है वो उसको प्रोत्साहन देते हैं
1: जी।
0: पर आपकी जो जिंदगी का सफर है कि आप कहते हैं कि आपने जो लिखा आपने फिर फाड़ दिया उसको ताकि कोई उसको पढ़े ना।
1: हाँ जी।
0: तो और कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद आपके जो भाई साहब है उनको ये महसूस हुआ कि शायद हमने कोई गलती करी है कि हमने सभी जी को मौका नहीं दिया है।
1: हाँ जी।
0: लिखने का या बोलने का या खुल के सामने आने का। खैर, ये तो समय समय की बात होती है। आज आपका एक जाना पहचाना नाम है और आज आप लिखती हैं। मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप कोई ऐसी कविता सुनाएं जो आपके शुरुआती दिनों की हो या जो आपने भाई साहब को सुनाई हो।
1: जी, जो भाई साहब को सुनाई थी वो शायद ना सुना पाऊं मैं
0: जी।
1: मैं आपको ऐसे ही
0: जी
1: कुछ कविता पढ़ के सुनाती हूँ।
0: जी जी।
1: एक सीप कोई समंदर का, एक सीप कोई समंदर का, एक फूल किसी मंदर का, एक सितारा उस आसमान का, एक नजारा इस जहान का, एक झलक तेरे हुस्न की, एक महक मेरे इश्क की, एक इशारा तेरी नजरों का, एक सहारा मेरे अधरों का, एक तपिश तेरी उंगलियों की, एक कसक मेरी हथेलियों की, एक सच तेरी हां का, एक झूठ मेरी ना का, एक सुकून तेरी बाहों का, एक जुनून मेरी चाहों का, एक सपना तुझसे मिलने का, एक सपना संग चलने का, एक रंग तेरी होली का, एक तंज मेरी बोली का, एक वक्त तेरे आने का, एक वक्त तेरे जाने का, एक पल में जान आती है, एक पल में जान जाती है, एक सादा दिल सनम का, एक वादा अगले जन्म का, एक सादा दिल सनम का, एक वादा अगले जन्म का, एक कल था एक आज है, एक अफसाना एक राज है, एक पहेली है कवि की, एक सहेली है सवि की, एक तू एक तेरी तमन्ना, एक तेरा कहना एक मेरा सुनना,
0: क्या
1: एक
0: बात?
1: तेरा कहना एक मेरा सुनना। शुक्रिया।
0: ये शुरुआती दिनों में आपने लिखा है, और एक शायर के तौर पर आप मुझे ये बताइए कि जब आप कुछ लिख के उसको फाड़ देते थे तो क्या आपको अच्छा लगता था या बुरा लगता था?
1: नहीं, बहुत दुख हुआ करता था कि ये सच्चे जज्बात होते हैं उस वक्त
0: जी।
1: आज हम कुछ बहर में लिखते हैं
0: जी,
1: कुछ किसी को पढ़ के लिखते हैं, किसी को सुन के लिखते हैं, लेकिन वो खाली सपने जज्बात हुआ करते थे, वो किसी और उसमें कुछ मिलावट नहीं हुआ करती थी, कोई बहर नहीं हुआ करती थी, सिर्फ भाव हुआ करते थे। वो मुझे लगता है कि बहुत दुख भी हुआ था और आज भी बहुत दुख होता है सोच के कि मैंने क्या लिखा था।
0: और क्योंकि वो याद भी शायद नहीं होगा,
1: नहीं याद होते वो।
0: मुझे इसके साथ जुड़ा हुआ एक बात बताइए, एक कवि है या कवित्री है, उसको से रात वो सो रहे हैं और कुछ ख्याल आया, जग गए और कुछ ख्याल आया लिखने का, क्या उस कवि या कवित्री को सुबह तक इंतजार करना चाहिए या उसी समय उठ के वो लिखना चाहिए?
1: नहीं, इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं तो कभी कभी झाड़ू लगा रही होती थी कभी बर्तन मांज रही होती थी, कभी प्रेस कर रही होती थी
0: जी,
1: वो छोड़ के मुझे लिखना पड़ता था
0: क्योंकि वो ख्याल दोबारा
1: नहीं आता,
0: नहीं आएगा ना रुकेगा वो।
1: तो डांट भी पड़ती थी कि ये काम बीच में, झाड़ू अब बीच में पड़ी है, ये प्रेस कपड़ा जल गया है, तो वो छोड़ के फटाफट लिखने शुरू कर देती थी कि मैं फटाफट लिख लूं। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ।
0: क्या दिल में खुशी होती थी कि चलो अगर डांट भी पड़ गई बट जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया?
1: बिल्कुल, बहुत खुशी होती थी कि जो जज्बात दिल में आए वो कह डाले, कोई पढ़े कोई ना पढ़े, लेकिन वो मेरे पास कुछ तो महफूज है।
0: श्रोताओं को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के सफर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कभी भी हमारी जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जिंदगी में। और हमें आज सवि जी से बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी बातों से मुझे भी मार्गदर्शन हो रहा है और मुझे उम्मीद है जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी ये मार्गदर्शन दिख रहा होगा कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है, पर जो मुश्किलों में अपनी जिंदगी की राह बनाते हैं वो शायद जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं और जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहते हैं। सवि जी से पूछते हैं हम शेर व शायरी की ओर, कब से आपने रुख किया और क्या कोई कविता या कोई शेर जो सबसे पहले आपके हिसाब से हो, क्या आप हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
1: जी, शायद मैं 15 या 16 बरस की होंगी, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कुछ लिख भी सकती हूँ
0: जी।
1: तो पहले आप जानते हैं, आप कैलेंडर हुआ करते थे घर में, शिव पार्वती का कैलेंडर, आप ये समझ लीजिए, वाल्मीकि समझ लीजिए मुझे
0: जी।
1: वाल्मीकि की तरह मैं शिव पार्वती के कैलेंडर को बड़े ध्यान से देख रही थी
0: जी।
1: पार्वती शिव की पूजा कर रही थी
0: हुँ।
1: और भगवान शिव की जो तस्वीर थी वो बहुत प्यार से पार्वती को देख रहे थे
0: ठीक।
1: और पार्वती कोई शायद ये ऐसा कैलेंडर में था कि वो नहीं जानती थी कि शिव मुझे देख रहे हैं, वो मगन होके उनकी आराधना कर रही है
0: जी।
1: तो मैं बड़े ध्यान से देखती देखती देखती देखती तो मुझे ख्याल सा आया, वो कुछ इस तरह था कि ना डालो हम पर तुम ऐसी नजर, ना डालो हम पर तुम ऐसी नजर, लगते हो कुछ परेशान, हम नहीं है बेखबर। लेकिन ये मेरा अपना विचार था
0: उस समय, जो ख्याल मन में आया हुआ आपने लिखा।
1: ये मेरी पहली दो लाइनें हैं
0: okay.
1: एकदम शुरुआती दौर की पहली दो लाइनें, अब पता नहीं अच्छी थी कि बुरी थी, कह डाली लिख डाली जो अभी तक मुझे याद है।
0: याद है। आपका उपनाम सवि है, इसका मायने क्या है और कब से आपने इस उपनाम को लिखना अपने नाम के साथ शुरू किया?
1: जी, वैसे देखिए सवि का तो अपना कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं है, हाँ सवीना, सवीना जिसको आप कह सकते हैं कि वीणा
0: जी,
1: वीणा जो सरस्वती माँ के पास होती हैं
0: जी,
1: वीणा और सवीना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती के नाम से जुड़ा हुआ मेरा नाम है सवीना, तो माँ सरस्वती, सरस्वती भी कह सकते हैं आप इसको,
0: यानी कि आपको सवि के नाम से भी अब जाना जाता है।
1: जी जी जी, वो मैंने खुद ही अपने नाम को शॉर्ट कर लिया कुछ उपनाम सूझा नहीं तो अपने नाम को शॉर्ट कर लिया।
0: सवीना जी, क्या संगीत की, और जैसे आपने अभी बात की कि आपके घर में ही संगीत का माहौल रहा है और संगीत की तरफ आपकी कितनी रुचि है, हम चाहते हैं कि कोई अगर आपका मनपसंद गीत या गजल हो जो हम आपको भी और अपने श्रोताओं को भी सुनाएं।
1: जी, संगीत का मैं आपको बताऊं, संगीत मेरे लिए एक दवा की तरह काम करता है
0: जी,
1: खासकर पुराने गीत या गजलें, गुलाम अली जी
0: जी
1: उनकी गजलें मैं बहुत सुना करती थी, उस वक्त भी बहुत सुना करती थी और आज भी सुनती हूँ
0: जी,
1: वो मेरे लिए एक ऐसी दवा का काम करती, जितनी मर्जी टेंशन में हूँ मुझे एकदम रिलैक्स हो जाता है गजलें सुनकर, पुराने गीत सुनकर। एक गुलाम अली जी की एक अवारगी फिल्म का गीत है या गजल है, ऐसा कह सकते हैं। चमकते चांद को टूटा हुआ सितारा बना डाला, वो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे लिए लिखा हो।
0: तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप श्रोताओं के लिए इसको गुनगुना सकते हैं,
1: चलिए कोशिश करते हैं। चमक

0: सविना जी, आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक है मोती पलकों के, इसके बारे में बताएं, श्रोता भी जानना चाहेंगे।
1: काफी समय से लिखते लिखते डायरी की शक्ल तो बन ही गई थी
0: जी,
1: काफी समय से डायरी भी सिर्फ पड़ी हुई थी। आपको मैं बता दूं कि शादी के 20 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, इतना बच्चों में परिवार में इतना व्यस्त हो गई थी मैं। उस दौरान मैं ये सोचा करती थी कि ये मैंने ही लिखा है, बिल्कुल जैसे मैं भूल ही गई थी कि मैं लिखा भी करती थी कभी। शादी करके मैं जैसे जम्मू में गई, 8-9 साल वहां रहे, मिलिटेंसी के कारण हमें यहाँ वापिस आना पड़ा। तो वो लिखा हुआ था, तो जब जो जानने वाले थे मेरे घर में, रिश्तेदार थे, कुछ दोस्त थे, तो वो धीरे धीरे करके उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम लिखा करती थी, कहा है, मैंने कहा हाँ लिखा करती थी, पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने बोला कि अपनी डायरी मुझे दे दो पढ़ने के लिए
0: जी।
1: कुछ झिझक भी हुई कि कुछ तो है नहीं, हाँ। उसमें बचपने का है वो, बचकाना चीजें हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने उनको वो डायरी निकाल के दे दी। कुछ बुरी सी अवस्था में भी थी, काफी सालों के से पड़ी हुई थी अलमारी में। तो वो जब डायरी निकाल के मैंने दे दी, वो चले गए, वो लखनऊ में रहते हैं। 1-2 महीने के बाद जब डायरी उन्होंने मुझे लौटाई, तो ये पुस्तक के साथ लौटाई,
0: यानी उन्होंने उस डायरी को पढ़ा,
1: हाँ जी,
0: और उसके बाद उसको एक पुस्तक का रूप दिया,
1: हाँ जी। हालांकि ये पुस्तक मैंने आज तक सेल नहीं की, किसी को तोहफे में दे दी, किसी को अपनी निशानी की तरह दे दी, सेल नहीं की मैंने। बहुत मेरे लिए बहुत गौरव की बात है ये कि उन्होंने, मैंने उनको एक डायरी दी थी फटी पुरानी सी, उन्होंने मुझे ये पुस्तक के रूप में उसको लौटाई। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके जरिए करना चाहूंगी, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बगैर उठाया
0: और आपके लिए, हाँ, एक जिंदगी भर का एक ऐसा तोहफा दे दिया।
1: तोहफा जी, बिल्कुल,
0: जो आप हमेशा याद करती,
1: बिल्कुल याद रखूंगी मैं इसको, मुझे ये शायद जान से भी ज्यादा प्यारी है।
0: एक कविता हो जाए इसमें से जो आपको सबसे पसंद है, और इस पुस्तक का नाम रखा गया है मोती पलकों के, तो सवि जी एक कविता हो जाए
1: जी। मैं आपको एक गजल सुनाना चाहूंगी
0: जी,
1: कि उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू न ले इम्तहां इस कदर जिंदगी। उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू न ले इम्तहां इस कदर जिंदगी, अब तो है हर दवा बेअसर जिंदगी, अब तो है हर दवा बेअसर जिंदगी, जहर अब कर चुका है असर जिंदगी। हसरतें पूरी हो जाती शायद सभी, हसरतें पूरी हो जाती शायद सभी, और थोड़ी सी होती अगर जिंदगी।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: अब न सामान जोड़ो जमाने का तुम, अब न सामान जोड़ो जमाने का तुम, है किसी की नहीं ये अमर जिंदगी। जैसे हमने गुजारी है अब तक यहाँ, जैसे हमने गुजारी है अब तक यहाँ, कोई करता नहीं है बसर जिंदगी।
0: जी।
1: मीठे फल हमको जिसने हमेशा दिए, हमारे माता पिता
0: जी,
1: उनके लिए है ये शेर। मीठे फल हमको जिसने हमेशा दिए, कट गया वो हमारा शजर जिंदगी।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। हम तो जीने की कोशिश ही करते रहे, हम तो जीने की कोशिश ही करते रहे, खत्म लेकिन हुआ अब सफर जिंदगी। तेरी यादें बसी हर गली हर डगर, तेरी यादें बसी हर गली हर डगर, छोड़ आऊं बता किस नगर जिंदगी, छोड़ आऊं बता किस नगर जिंदगी, उनका दीदार कर लेती शायद सवी, उनका दीदार कर लेती शायद सवी, रोक लेती कदम तू अगर जिंदगी।
0: बहुत खूब।
1: उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू ना ले इम्तहां इस कदर जिंदगी।
0: बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: सवि जी। ये गजल सुन के मुझे एक ख्याल आ रहा है, आपने कहा कि एक दौर ऐसा आया जब आपके परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा थी, आपने माँ का रोल निभाया, तो लिखने का आपने छोड़ ही दिया था, मतलब आप लिख नहीं रही थी।
1: जी जी जी।
0: तो यानी कि जिम्मेदारियों के साथ साथ आपने कभी भी समझौता नहीं किया है।
1: हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही।
0: पर ये मानता हूँ कि मैं, जो हमारे अंदर एक कला होती है या जो हमारा एक पैशन होता है, वो कभी भी एक व्यक्ति के अंदर मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। तो जब आपने अपने आप को थोड़ा सा फ्री पाया,
1: हाँ जी,
0: बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो गई, उसके बाद फिर आपने लिखना शुरू कर दिया।
1: जी, ये भी आप ये कहिए कि मेरे जो मुझे जानते थे कि मैं लिखा करती थी, उन्होंने मुझे जगाया।
0: क्या आप जो कर रहे थे,
1: जो ये मतलब उन किताब जैसे छपी, तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि तू दोबारा लिख। मैंने शायद सोचा कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। फिर मैं अपने आदरणीय विनय सागर जायसवाल जी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मिले, और वो मुझे जब मैं ये व्हाट्सएप पे ये भेजा करती थी तो वो बहुत तारीफ किया करते थे कि बहर के बहुत करीब हो तुम, थोड़ा सा और बहर में आ जाओ। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि बहर होता क्या है, वन टू देखा करती थी मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी
0: जी।
1: फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे समझाना शुरू किया, और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा यहाँ करना चाहूंगी कि वो मेरे दूसरे गुरु हैं,
0: यानी कि वो आपके मार्गदर्शक रहे हैं इस सफर में।
1: हाँ जी।
0: कोई और कविता आप सुनाना चाहेंगे?
1: ये देखिए, मैं गा तो नहीं सकती वैसे, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी।
0: हाँ,
1: यहाँ पर
0: तरन्नुम में आप गाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कला हमारे पास नहीं है। हमें बहुत खुशी होती है कि अगर हम तरन्नुम में सुने तो उसका आनंद और बढ़ जाता है।
1: जी। वफा किसी से निभा के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, हथेलियां भी लगे महकने, हथेलियां भी लगे महकने, किसी का दामन सजा के देखो, ये दिल तुम्हारा भी खिल उठेगा, ये दिल तुम्हारा भी खिल उठेगा, जरा किसी को हंसा के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, है कितनी बेकल हमारी आंखें, है कितनी बेकल हमारी आंखें, कभी तो पलकें उठा के देखो, सुना है सुनी है तेरी महफिल, सुना है सुनी है तेरी महफिल, तो आज मुझको बुला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, सुकून की हद जो देखनी हो, सुकून की हद जो देखनी हो, तो दर्द दिल में छुपा के देखो, हजारों हाथों की गूंज सुनना, हजारों हाथों की गूंज सुनना, गजल हमें तुम सुना के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, वो वक्त कैसे गुजारा हमने, वो वक्त कैसे गुजारा हमने, हर एक लम्हा भुला के देखो, तड़पते रहते हो जिनको पढ़ के, तड़पते रहते हो जिनको पढ़ के, वो सारे खत तुम जला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, करार मिलता कहीं ना हमको, करार मिलता कहीं ना हमको, सभी को थोड़ी पिला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: एक कवि का जो मन है वो कहाँ से कहाँ जाता है।
1: हाँ जी।
0: और एक जगह बैठ के वो उस अपने मुरीद को या सुनने वालों को या चाहने वालों को पूरे विश्व का भ्रमण करा देता है। और आपने इसमें एक बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि नफरतों को मिटाना चाहिए, और अगर हमें एक अच्छा संसार और अच्छा देश, अच्छा समाज चाहिए, तो उनमें जो आपकी ये बात है और वो हमारी श्रोताओं तक पहुंच रही है, हम भी यही इल्तिजा करते हैं कि जो नफरतें हैं वो कम हो जानी चाहिए, वो मिट जानी चाहिए। गीत या गजलें आप कौन सी ज्यादा पसंद करते हैं? क्या किसी खास कलाकार को आप पसंद करते हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं या सुनते आ रही हैं?
1: जी, मुझे पुराने गीत ही पसंद है। गजलों के जो गायक हैं वो मुझे गुलाम अली ही पसंद है। बाकी जो फिल्मी गाने की जो मैं बात करूं तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, मैं एक किसी एक को ऐसा नहीं कि मैं पसंद करती, जो पुराने जितने भी हैं, किशोर कुमार साहब, रफी साहब और पंकज मलिक जी, हेमंत, गीता दत्त, हाँ जी, मुझे पुराने गीत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: अभी हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि आपका जन्म चंडीगढ़ में हुआ है, क्या चंडीगढ़ की कोई बचपन की कोई झलक आप हमारी श्रोताओं को देना चाहते हैं, ताकि हम बातों से ही उनको चंडीगढ़ में आपके उस दौर की ओर लेके जा सकें?
1: जी, चंडीगढ़ में बचपन बहुत ही सुहाना और बहुत ही प्यारा गुजरा। जिस तरह से आजकल बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, ऐसा उस वक्त बिल्कुल नहीं था।
0: जी,
1: खुले खुले मैदान, बहुत ही खुले खुले मैदान, जिसमें हम सारा सारा दिन दौड़ा भागा करते थे, झूले लगे हुए थे, झूले लिया करते थे। और आजकल तो हम अपने बच्चों को शायद अकेला झील में जाने ही नहीं देंगे घूमने के लिए, तो हम सारा सारा दिन वहां पैर लटका के बैठे रहा करते थे पानी में।
0: अच्छा,
1: इतना आनंदित था हमारा बचपन, इतना आनंदमय था कि मैं आज बच्चों को जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही रहम आता है उनके ऊपर कि बड़ी बंदिशों में आजकल के बच्चे। इसी वजह से शायद पढ़ाई वढ़ाई कुछ कम ही रह गई हमारी, खेलकूद में ज्यादा समय बीता करता था। कभी कभी तो हम सारा सारा दिन घर ही नहीं आया करते थे कि घर जाएंगे तो खाना खाने के लिए रोक लेंगे, खाना भी नहीं खाना है। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत है चंडीगढ़, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतने फूल, झील का किनारा, बहुत सुंदर माहौल में मैं रही हूँ और वहीं बैठ के गजलें लिखा करती।
0: क्या कविता लिखने में भी वहां पर कुछ ऐसा माहौल बनता था कि कुछ ख्याल आते थे जो आप?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फूलों की क्यारियां वहां इतनी हुआ करती थी कि मैं बस दरी बिछा के लेट जाया करती थी और खूब लिखा करती थी। अकेली जब होती थी, मुझे मदद की है वहाँ का माहौल लिखने के लिए।
0: यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं को सुनाएं, तो क्या कोई फिल्मी गाना भी आपको पसंद है?
1: जी, मैं चंडीगढ़ की जो भूली बिसरी यादें हैं,
0: जी जी,
1: उन्हीं के ऊपर मुझे गीत याद आता है कि वो भूली दास्तां वो फिर याद आ गई।
0: तो बस आप गुनगुनाइए और हम फिर उस गाने की ओर चलते हैं।
1: जी, बहुत पुराना गाना है, मैं कोशिश करती हूँ।
0: जी,
1: वो भू

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। आज के काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कवित्री सवीना वर्मा सवी जी। ये कार्यक्रम का अंतिम भाग है, चर्चा हमारी सवी जी के साथ जारी है। सवी जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके लिखे शब्द आपके दिल को छूते हैं? अगर हाँ, तो मुझे विश्वास है कि आपके सुनने वाले और चाहने वालों को भी ऐसे ही आभास होता होगा।
1: जो ये लिखा हुआ होता है, मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसा होता है लिखने वाले के लिए जैसे हमारे बच्चे हों
0: जी।
1: आप ये नहीं कह सकते मुझे ये बच्चा पसंद है, ये बच्चा नहीं पसंद है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: मेरी अपनी मासी का किस्सा है ये, शायद वो सुने तो। उनके उस जमाने में 9 बेटियां थी, पटियाला की बात है ये। गेस्ट हाउस था उनके पास, तो वहां पर अंग्रेज आके रुके, बाहर से उस वक्त बहुत घूमने फिरने आया करते थे, तो रुके। तो उन्होंने बोला, आपके पास 9 बेटियां हैं, हम पूरे डॉक्यूमेंट बना के पूरी अपनी जजात इसके नाम लिख के एक बेटी हमें दे दो।
0: अच्छा।
1: जितनी भी हमारे पास जजात है, जितनी भी धन दौलत है, हम इसके नाम लिखेंगे, फिर हमें ये गोद दे दो। उन्होंने वो बेटी गोद नहीं दी उनको, हालांकि खुद वो इतने रिच नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे, साधारण फैमिली थी। लेकिन वो तो वही मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे ही लिखने वालों के लिए अपनी गजलें, अपनी कविताएं ऐसी होती, सभी को अपनी गजलें या मुझे प्यारी होती हैं। और हाँ, बहुत दिल के करीब, जब मैं बहुत ही मतलब इमोशनल होती हूँ, या जब मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ, कि जब बहुत ज्यादा मूड होता है ना लिखने का, कि जबरदस्ती नहीं लिखती हूँ, कि अपने आप से जबरदस्ती लिखवा डालूं,
0: कुछ ख्याल आ गया,
1: कुछ ख्याल तो, जब अच्छे आते हैं मैं तभी लिखती हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं लिखती मैं। तो इसी के साथ एक गजल आपको सुना देती हूँ, कि सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप खुद बना सकते हैं, और जो रिश्ते होते हैं वो आपको भगवान की दया से ही मिलते हैं, लेकिन दोस्त आप खुद चुन सकते। सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने।
0: वाह।
1: सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने। उफ ये प्यारा हन तुम्हारा और ये कातिल अदा, उफ ये प्यारा हन तुम्हारा और ये कातिल अदा, ताज भी फीका लगे इस सादगी के सामने।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। बेखुदी है या नशा है या के दीवाने हैं हम,
0: बेखुदी है
1: या नशा है या के दीवाने हैं हम, कुछ नजर आता नहीं इस रोशनी के सामने। जाम खाली हो गए लेकिन अभी तक होश है, जाम खाली हो गए लेकिन अभी तक होश है, वो नशा कुछ और था इस मैकशी के सामने।
0: क्या बात।
1: वो नशा कुछ और था इस मैकशी के सामने। होश तो जाकर ना आया अब तलक यारो मेरा, होश तो जाकर ना आया अब तलक यारो मेरा, आज हम मजबूर हैं बस बेसुधी के सामने। गौर फरमाइएगा। मन मयूरा नाच उठता देख तुझको सांवरे, मन मयूरा नाच उठता देख तुझको सांवरे, तू भी आके नाच ले इस बांवरी के सामने।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: बाखुदा हमने न समझा उनको बेगाना सवी, बाखुदा हमने न समझा उनको बेगाना सवी, हम निशाने पर रहे क्यों दिल लगी के सामने, हम निशाने पर रहे क्यों दिल लगी के सामने। सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने।
0: बहुत खूब, आपने सवी जी मेरे सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया है, और जो मेरा सवाल था उस सवाल के बदले आपने जो हमें ये कविता सुनाई, ये सटीक जवाब है। और मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके कविता के चाहने वाले हैं, जो हमारे श्रोता हैं, ये कविता भी उनके दिल तक पहुंची होगी। अगर जिंदगी में हर कोई साथ छोड़ दे, पर दोस्त कभी हाथ छोड़ नहीं देता, न वो साथ छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। सभी जी, जो आपने गजलें आज तक लिखी है, क्या आपकी गजल किसी गायक ने गाई है, या आने वाले दिनों में ऐसी कोई योजना है?
1: ये योजना तो कोई नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पे बहुत लोग गाते रहते हैं, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि आपकी गजल जब हम गाते हैं तो हमें फरमाइश आती है, हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं कि सवीना जी की गजल गाइए।
0: बहुत अच्छी बात है ये
1: जी। ये मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ।
0: जी जी।
1: मेरी इच्छा है कि काश गुलाम अली जी मेरी एक गजल गा दे, लेकिन शायद ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाएगा, शायद जिंदगी में कभी उन तक पहुंचे।
0: नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर आप प्रयत्न करें तो कई बार ऐसी चीजें भी संभव होती है जो हमने सोचा होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आप उनके साथ किसी न किसी तरीके से संपर्क कर सकते हैं। हाँ मानते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा है, शायद एक साधारण मैसेज का या किसी कारणवश वो जवाब ना दे पाए, पर मैं मानता हूँ हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, एक दिन वो जरूर आएगा। गुलाम अली साहब नहीं तो हमारे देश में बहुत अच्छे गजल गायक है, वो आपकी गजल को गाएंगे और आपके शब्दों को वो अपनी आवाज दे सके, उसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने गुरुजन को कैसे याद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कार्यक्रम के माध्यम से अपने गुरुजन को?
1: जी पहले गुरु तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा मेरे भाई साहब ही थे
0: जी,
1: और दूसरे गुरु मैंने विनय सागर जायसवाल जी का नाम लिया। मैं उन दोनों को रोज सुबह शाम जरूर एक बारी प्रणाम करती हूँ, शायद उन्होंने मैंने कभी कहा नहीं उनको, लेकिन मैं इस माध्यम से आपके माध्यम से उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे विनय सागर जी ने बहुत कुछ सिखाया, लिखा भाव अपने होते हैं लेकिन उनको कोई चमका दे पॉलिश कर दे तो वो कुछ और ही बन जाते हैं।
0: और एक रास्ता बता दें कि किस तरीके से हम अपने उस थॉट को उस सोच को कैसे हम पेश करें। अंत में आपसे चाहता हूँ कि हमारे देश के जो नए कवि और कवियत्रियां हैं, आप उनको अपने अनुभव से क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि वो भी लिखना जारी रखें, एक वो मुकाम हासिल करें जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं?
1: जी मैं अपने अनुभव से तो मैं सबसे पहले तो माता पिता को यही संदेशा देना चाहूंगी कि बच्चों में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ कोई ना कोई गुण जरूर होता है, हर इंसान में होता है, तो कोई भी गुण ऐसा देखें तो उसे प्रोत्साहित करें, उसे रोके नहीं, साथ खड़े हों उसका, जो शायद हमें नहीं मिला लिखने लिखाने का सुनने सुनाने का। हमारा शायद ये सफर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बच्चे जो भी उनके अंदर कोई भी ऐसा कुछ हुनर हो तो उसे छुपाएं नहीं, मेरी तरह खुल के सामने आए, एक नहीं तो कोई ना पहला कदम उठाएं तो कोई ना कोई दूसरा कदम उठाने के लिए आपका हाथ जरूर थामेगा।
0: सभी जी आपकी बात सही है, बट तब से और अब के समय में बहुत बदलाव आ चुका है। आज पेरेंट्स इस सोच से होते हैं कि अगर बच्चे में उनका कोई हुनर है, उनमें कोई काबिलियत है तो वो उसका साथ देते हैं। तो क्या कोई और आप हमें कविता सुनाना चाहेंगे जाते जाते?
1: जी एक हल्की फुल्की सी गजल मैं सुना सकती हूँ आपको। जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए।
0: वाह।
1: जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए, इश्क का तब बुखार होगा कम, इश्क का तब बुखार होगा कम, उनका लहजा कुनीन हो जाए, इश्क का तब बुखार होगा कम, उनका लहजा कुनीन हो जाए। अब न खींचो ये धागा रिश्ते का, अब न खींचो ये धागा रिश्ते का, फिर ना नाता महीन हो जाए।
0: क्या बात,
1: शुक्रिया। हम लुटा देंगे उस पे जानो दिल, हम लुटा देंगे उस पे जानो दिल, वो भी तो जानशी हो जाए, वो जहां पांव रखते हैं अपने, वो जहां पांव रखते हैं अपने, फूल सी वो जमीन हो जाए, वो जहां पांव रखते हैं अपने, फूल सी वो जमीन हो जाए। आज छूने से जिसको डरते हो, आज छूने से जिसको डरते हो, आदमी वो कुलीन हो जाए। और गौरे तलब शेर देखिएगा कि नीम सी दोस्ती जरूरी है,
0: नीम सी दोस्ती जरूरी है,
1: कड़वी नीम सी दोस्ती जरूरी है, क्या हो अगर सब शिरीन हो जाए।
0: क्या बात,
1: नीम सी दोस्ती जरूरी है, क्या हो अगर सब शिरीन हो जाए, मेरी कोशिश का फल मिले मुझको, मेरी कोशिश का फल मिले मुझको, अब सभी नामचीन हो जाए।
0: क्या बात,
1: अब सभी नामचीन हो जाए, जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए।
0: सभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर हुई, आप यहाँ आए, आपने अपने कविताओं के जरिए हमारे श्रोताओं को अपने जो शब्द है, लिखे शब्द है, वो आपने पहुंचाए। और आज जैसे आपने आखिरी जो कविता पढ़ी है, और आप नामचीन तो पहले ही हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप और मशहूर हो जाएं और बड़े स्तर पर आप मुशायरों में जाएं, आप अपना कविता पाठ करें वहां पर। जहां तक मेरा ख्याल है, हमारे पास जो कला होती है उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। और इन शब्दों के साथ ही मैं आपका एक बार फिर अपनी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं इजाजत आप सभी श्रोताओं से और इस प्रोग्राम का समापन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: मैं आपका और श्रोताओं का और आप भारत जी आपका, रेडियो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे, छोटे से कलाकार को आपने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किया, और मैं चाहूंगी कि मैं फिर से आऊं।
0: बहुत बहुत
1: बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही दालच में एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
1: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
3: तुछु बोजान FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِد اَستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد.

0: हरीश, आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पेश है कार्यक्रम घर परिवार, एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती दीप्ति बाला जी। प्रस्तुत करेंगे आरजे सेजल।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और कार्यक्रम शुरू हो चुका है घर परिवार अंक 4 आरजे सेजल के साथ। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है परवरिश और टेक्नोलॉजी। पहले समय में परवरिश और आज के समय के पालन पोषण में काफी अंतर आ चुका है। कहीं ना कहीं इस बदलाव में बदलती या कह लीजिए बढ़ती टेक्नोलॉजी का भी योगदान है, जो अब बड़ों के हाथ से निकलकर बच्चों के हाथ में आ गई है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति बालाजी, जो एक अध्यापिका हैं और पिछले 23 सालों से अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही एक सिंगल मदर भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सेजल, आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वाले श्रोताओं का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जैसे हम परवरिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके मुताबिक पहले समय की जो परवरिश होती थी और आज के समय में जिस तरीके से बच्चों की परवरिश हो रही है, उसमें आपको क्या अंतर लगता है?
1: पहले समय में ये होता था कि मदर्स जो थी ज्यादातर होममेकर्स होती थी और घर पर ही रहती थी, लेकिन आजकल के बदलते हुए दौर में ये देखा गया है कि मदर्स जो है वो ऑफिस जाती हैं, बाहर काम करने जाती हैं, तो उसमें बच्चों को पालन पोषण में काफ़ी परेशानी होती है। पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे हम अभी हमने ये सुना है कि बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, उनको मित्र के जैसे रखना चाहिए, लेकिन पहले टाइम में ये सब नहीं था। जब हम छोटे थे तो हमारी मदर जो थी हमारे साथ एक मदर की तरह ही बिहेव करती थी, कभी एक मित्र की तरह हमसे बात नहीं करते थे और हमें डर होता था उनका। कोई भी बात है, कोई गलत बात करने से पहले हमें ये होता था कहीं मम्मी देख ना ले, कहीं पापा देख ना ले, या कह लो कि एक डिस्टेंस होता था, हमें डर होता था। लेकिन आजकल की जो मदर्स हैं वो बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करती हैं, ये अच्छी भी बात है, ये कि एक गलत बात नहीं है, लेकिन वो इतना फ्रेंडली हो जाती हैं कि बच्चों में जो एक मदर और एक बच्चे का डिस्टेंस होना चाहिए वो भूल जाता है। आप ये सोच लो कि कोई भी बात अगर उन्हें कोई खटकती है तो अब वो एकदम से नेट पे सर्च करती हैं, अगर बच्चा ये कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये कर रहा है तो क्या करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उनके पास बड़े नहीं होते। आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते जी। तो ये थोड़ा एक तरह से माइनस पॉइंट होता है कि हम नहीं पूछते किसी से यहाँ से, तो मतलब नेट तो नेट ही है, वो क्या आपको दिखाए इसका कुछ पता नहीं है।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसी चीज़ बन चुका है कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन लेने के लिए हम कहीं ना कहीं इंटरनेट की ओर ही भागते हैं। आज टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप टीचर भी हैं और एक मदर भी हैं, ज़्यादा मुश्किल स्कूल में बच्चों को संभालना होता है या घर में बच्चों को संभालना होता है?
1: देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर पे हो चाहे बाहर हो, बच्चों को तो संभालना मुश्किल होता ही है। लेकिन ये होता है कि आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि जैसे मैं

0: एक टीचर हूँ, मैं मदर्स से भी बात करती हूँ, तो मदर्स मतलब यही बोलती हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे कंट्रोल में नहीं है, 24 घंटे फोन पे लगा रहता है। लेकिन मैंने ये हमेशा उनको बोलती हूँ कि अभी बच्चा छोटा है, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो इमोशनली अटैचमेंट होती है उसके साथ।
1: जी
0: हम क्लास में भी ये ऐसे करते हैं कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर तू ये पढ़ेगा तो मैं तेरे को मतलब क्लैपिंग करवाऊंगी क्लास में, ऐसे मोटिवेशन करते रहते हैं बच्चों की। लेकिन आजकल की जो मदर्स है ना, वो खुद ही फोन पे बिजी रहती हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा मतलब ये रूटीन है, मैं जब भी क्लास में एंटर करती हूँ ना, सबसे पहले 5-10 मिनट बच्चों को मोटिवेशनल थोड़ी स्पीच देती हूँ, उनको एथिक्स समझाती हूँ, बेसिक नॉलेज देती हूँ बच्चों को कि अपनी जो मदर है उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, या कुछ ऐसी गाइडेंस सुबह ही देती हूँ ताकि सारा दिन बच्चों का माइंड जो है ना वो सेट रहता है।
1: जी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कम उम्र में ही उनको इस कॉन्फिडेंस की, इस मोटिवेशन की बहुत ही कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, जैसे कि हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में।
0: जी
1: आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि पहले टाइम में कंपैरिजन होता था बच्चों को लेके, कि रिलेटिव्स के साथ बच्चे कंपेयर करते थे पेरेंट्स कि कोई पढ़ाई में अच्छा है, हमारा बच्चा नहीं अच्छा। लेकिन आज के समय में आप कह लीजिए कि तुलना अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों से हटकर अब दुनिया तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारे हाथ में फोन है, हम रील्स देखते हैं, इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं, तो देश दुनिया के कई सारे बच्चों का हमें टैलेंट दिखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बच्चों में कमी ढूंढने लग जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि किस तरीके से इस चीज को ठीक कर सकते हैं?
0: हम ये अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इंटरनेट पे बच्चों की काबिलियत देख के, दूसरे बच्चों की काबिलियत देख के, उनकी पोस्ट देख के चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सेम वैसे ही ढंग से करे। लेकिन मेरे नज़र में ये चीज़ गलत है। हमें अपने बच्चों को इस तरह से दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और उसी ढंग को अपनाते हुए हमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आज के समय में जैसे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट काफी आगे बढ़ चुका है, और ऐसी रील्स जो है स्क्रॉल करते करते हमारे सामने आ ही जाती हैं, और उन्हें नजरअंदाज करना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी रील्स हर पेरेंट्स की सोशल मीडिया फीड पर ना जाने ही कितनी ही होंगी। तो अब ऐसे में आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, यहाँ पे तो ये है कि जो रील्स में हमें दिखाया जाता है, हम उसी पहलू को देखते हैं। क्या आपने उनके घर की व्यवस्था देखी है कि वो घर में बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रहते हैं,
1: जी
0: क्या बिहेव करते हैं? हमें सिर्फ मीडिया में काफ़ी टाइम की मशक्कत के बाद एक 5-10 मिनट की, या कह लो कुछ सेकंड्स की वीडियो दिखाई जाती है, और उनका एक ब्राइट पार्ट ही बच्चे का दिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका घर कैसा है, उनका रहन-सहन कैसा है, ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखते हुए हमें अपने बच्चों को उन पे नहीं थोपना चाहिए। आप बच्चे की खुद की काबिलियत देखिए और बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना चाहिए।
1: जी हाँ, बच्चों की उम्र भी बहुत कम होती है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि उनके लिए सब एनवायरनमेंट भी नया है, ये सब चीज़ें भी नई हैं, फ़ोन भी उनके लिए नया है। जो पेरेंट्स हैं वही एक तरीके से बच्चों को हर एक चीज़ से, हर एक पहलू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका पेरेंट्स की ही रहती है इन सब चीज़ों की इंट्रोडक्शन में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन बच्चों का मोरल भी डाउन करता है। इसी जगह अगर हम उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही आप बच्चों को काफी समय से पढ़ाती आ रही हैं, तो आपके मुताबिक उन्हें किन एक्टिविटीज के द्वारा अपने साथ जोड़ा जा सकता है?
0: एक्टिविटीज़ तो बहुत हैं। जैसे मेरे खुद के 2 बच्चे हैं,
1: जी
0: तो जब वो छोटे थे ना, मुझे याद है मेरा बड़ा बेटा UKG में था, तब से मैंने उसको इंडिपेंडेंट बनाया।
1: जी
0: मैं खुद जॉब करती थी, मैं स्कूल चली जाती थी, तो मैं बच्चे को बोलती थी कि बेटा घर को लॉक ऐसे लगाना है, अच्छे से चेक करना है, ताला खींच के देखना है ताला लग गया है कि नहीं, उनको पूरा सिक्योरिटी के साथ पूरा अरेंज करके सुबह नाश्ते में दे दिया खाने को। वो स्कूल से जल्दी आ जाते थे, मैं लेट आती थी घर, तो मैं खाने के लिए कुछ रख जाती थी कि ये आपने स्कूल से आके ये करना है, यूनिफॉर्म उतारनी है, और उनको काम दे जाती थी करने के लिए कि आपने ये लर्न करके रखना है, मैंने आते ही सुनना है। और मैंने शुरू से ही उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया, जैसे उनकी वार्डरोब जो थी वो अलग कर दी, कि बेटा अपने जो क्लोथ्स हैं वो खुद ही रैप करके अलमीरा में रखने हैं, और संडे के संडे मैं खुद बच्चों को बोलती थी अपनी अलमीरा के कपड़े निकालिए, उसको अच्छे से अरेंज कीजिए। और जब मैंने किचन में काम करती थी कभी उसको प्याज दे देना छीलने के लिए कि बेटा ये प्याज छीलो, मेरी हेल्प करो, तो बच्चे बड़े खुश होते थे इन चीज़ों के लिए। तो लेकिन मेरे को लगता है कि आजकल की माएँ ये हेल्प नहीं लेती हैं, बच्चों को खुद जो है मोबाइल पकड़ा दे देती कि हैं कि वो मोबाइल लेके अपना बिजी रहेंगे और हम अपना काम कर लेंगे।
1: जी, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बच्चों को ज़्यादा पैम्पर भी किया जाता है, ताकि पेरेंट जो है अगर वर्किंग वुमेन भी हैं वो अपना काम ठीक से कर सकें और बच्चे शरारतें ना करें। तो कहीं ना कहीं फ़ोन का आजकल सहारा लिया जा रहा है। और एज एन टीचर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्लासरूम में बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उन्हें संभालना भी मुश्किल होता है, तो आप किन तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चों को करने के लिए कहती हैं ताकि वो क्लास में एक तो बिजी रहें और मेंटली भी क्रिएटिव रहें?
0: रीडिंग वगैरह बच्चे करते रहते हैं, कभी लर्निंग होगी, टेस्ट हो गया, ऐसे काम करते रहते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे ये सब करने के बाद जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं उनको जैसे वर्ड चेन कुछ ऐसी गेम्स खिलाती हूँ कि चलो बेटा जैसे मैं क्लास में जितने भी बच्चे हैं अ लेटर से जितने हैं वो खड़े हो जाओ और मुझे 5-5 कोई वर्ड्स न्यू बना के अ लेटर से ही सुनाओ। तो ऐसी मैं गेम्स खिलाती रहती हूँ। फिर बच्चों को मतलब बच्चे घर पे भी बिजी रहें उसके लिए जैसे मान लो उनकी पेंसिल बॉक्स है, कई बच्चों की बहुत सी अनटाइडी हो जाती है, पेंसिल शॉप करते हैं तो वो ब्लैक सी हो जाती है। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा देखो आप घर में नहाते हो ना, तो आपने क्या करना है घर जाके अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है। तो उसमें जैसे सॉक्स में साबुन डाल लिया, उनको पूरा ढंग बताती हूँ कि फिर मैं उनको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ कि मेरे बच्चे, मैं खुद अपने बच्चों को बोलती हूँ कि ये देखो पेंसिल बॉक्स से आपकी अनटाइडी हो गई है, इसको वॉश करो। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं घर पे बिहेव करती हूँ एज अ मदर, उस तरह से मैं स्कूल में आपकी मम्मा हूँ, तो आप जैसे मैं बोलूँगी वैसे मैंने कल देखनी है सबकी पेंसिल बॉक्स साफ होनी चाहिए। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं सुबह जब नेक्स्ट डे आते हैं तो मुझे दिखाते हैं, देखो मैम ये मेरी पेंसिल बॉक्स देखो कितनी सुंदर सी लग रही है, मैं भी नहाया था और मेरी पेंसिल बॉक्स भी नहाई थी। और इसी तरह से वाटर बॉटल भी, और पेरेंट्स भी खुश होते हैं जब वो पीटीएम पे आते हैं ना तो मेरे से डिस्कस करते हैं कि मैम देखो आपने ऐसा बोला था बच्चों को करने के लिए, घर आके हमें बोलते हैं कि मैंने अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है, अपनी बॉटल को भी साफ करना है। क्लास में भी काफ़ी एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, जैसे डिस्प्ले बोर्ड को हम डेकोरेट करते हैं तो बच्चों की मैं हेल्प लेती हूँ कि बेटा देखो ये जो चार्ट मैं लगा रही हूँ ये ठीक है, ये ऊपर तो नहीं है नीचे तो नहीं है ऐसे, तो स्टेपल पिन के साथ उनको मतलब सिखाती हूँ कि ये देखो ऐसे स्टेपल करते हैं, इस तरह से आप घर में भी मम्मा की हेल्प किया करो, अरेंज किया करो, चीज़ें ब्यूटीफुल रखा करो, जिस तरह आप अपने घर को ब्यूटीफुल रखते हैं अपनी क्लास को भी ब्यूटीफुल रखें। इस तरह से काफ़ी हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं क्लास में और बच्चे बहुत खुश होते हैं।
1: जी, कहीं ना कहीं माँ के बाद स्कूल में ही टीचर जो है दूसरे गुरु जो होते हैं हमारे, वो ही रोल प्ले करते हैं बच्चों को अच्छे से परवरिश देने में, उनके हर एक चीज़ मॉरल एथिक्स सिखाने में।
0: हाँ जी,
1: तो टीचर्स का भी एक अच्छा रोल रहता है। साथ ही अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट होने की, कि बच्चों को हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और आज का टाइम भी ऐसा ही है कि बच्चों को बचपन से ही इंडिपेंडेंसी के बारे में सिखाना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन सी एज ठीक रहती है कि बच्चों को हम अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू करें, उन्हें नई नई चीजें सिखाना शुरू करें कि वो मेंटली इतने एक्टिव रहते हैं कि ये काम कर सके वो?
0: देखिए ऐसे तो बच्चों की कोई एज नहीं होती
1: जी,
0: आजकल के बच्चे तो कह लो कि जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं
1: जी।
0: हमारे टाइम पे ये था कि हमें कोई चीज समझने में काफी टाइम लग जाता था कि जैसे आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जैसे हाथ जब उनका चलना शुरू हो जाता है तो मोबाइल पे ऐसे हाथ चलाते हैं जैसे सारा सिस्टम पता है। हमारे टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन ये है कि अगर हम इसी चीज का फायदा उठाते हुए बच्चे को शुरू से ही इंडिपेंडेंट कर ली, क्योंकि आजकल मदर्स जो हैं मोस्टली जॉब करती हैं तो फोन में ना लगाते हुए मदर्स जो हैं बच्चों को उसी लाइन में मोटिवेट करें, जैसे घर में अपने काम में हेल्प लें बच्चों से, या कुछ अच्छा सिखाएं, अच्छा दिखाएं। जैसे कि मान लो कि मैं ये चाहती हूँ कि अपने कल्चर के साथ अपने रिलीजन के साथ भी टच होना चाहिए बच्चों को शुरू से ही, जैसे हम सुबह उठें सबको नमस्ते या जो भी आप बोलते हो वो बोलें, उनसे उनको बताएं कि भगवान जी के बारे में ऐसी चीज़ें बताएं, मतलब उनको ऐसी चीजें सिखानी चाहिए
1: जी
0: शुरू से ही बच्चों को। तो ऐसे होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो बच्चे ये देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा जो हैं हमें ये चीजें बताते हैं, अच्छी बातें। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको ये भी पता होता है कि ये बात अच्छी है और ये बात मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही। शुरू से ही हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप जैसे देख रहे हो कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम अगर बच्चे को वो शुरू से ही ये आदत डालें तो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा ये चीज़।
1: जी, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से भी जो हमारे ट्रेडिशन रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर्स हैं, काफ़ी ट्रेडिशंस हैं, काफ़ी रिलीजन्स हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत देश भी है हमारा। और बच्चों को हर एक कल्चर के बारे में भी जानना चाहिए, खास तौर के अपने कल्चर के बारे में, जिस
0: जी
1: कल्चर में वह रहते हैं, जो उनकी मदर टंग है, जिस भी प्रकार से आपके घर में इतने फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं।
0: जी जी
1: साथ ही अभी हम बातें बहुत करेंगे और भी करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का। आप गीत भी जरूर सुनती होंगी,
0: जी जी
1: आपका कोई पसंदीदा गीत हो जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो प्लीज आप गुनगुनाएं जरूर।
0: जब भी मैं कभी मेरे मन पे किसी तरह का भी बोझ होता है या कुछ भी मेरा मन ऐसे विचलित होता है, तो मैं हमेशा यही सॉन्ग गुनगुनाती हूँ और क्लास में इवन बच्चों को भी सुनाती हूँ। बहुत अच्छे से बोल हैं इसके।
1: जी।

0: स्वागत है आप सभी का एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब वापस रुक करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है परवरिश और टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं कंपैरिजन के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, कि बच्चों को किन एक्टिविटीज के जरिए अपने साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, जहां मदर्स जो हैं वो वर्किंग हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है जैसे बच्चे जब खाना नहीं खाते, ज़्यादा शैतानी करते हैं, उन्हें फ़ोन देकर बिठा दिया जाता है। फ़ोन के बारे में भी अभी हमने काफ़ी बातें की वैसे। और हाँ, बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाना हमारे लिए तो आसान काम है ही, लेकिन यह उनके मन मस्तिष्क पर भी काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। तो इसके बारे में दीप्ति जी, आपका क्या कहना है?
1: जी सेजल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने अपने सराउंडिंग्स में ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि पहले तो बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना नहीं खाना, तो मदर्स क्या करती हैं, वो उनको बोलती हैं कि बेटा मैं आपको ना अभी फोन पे ना एक वीडियो दिखाती हूँ, आप सिर्फ 5 मिनट्स उसको देखो, और उसी दौरान वो बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देती हैं। जो बच्चा पहले कह रहा है मुझे भूख नहीं है, तो वो फोन जैसे ही मदर ऑन करती है तो बच्चा खाना शुरू कर देता है, वो बाइट देते जाती हैं, वो खाता जाता है। इस दौरान ये होता है कि बच्चा जिस तरह का प्रोग्राम देख रहा है ना, बच्चे की एक्साइटमेंट वैसी हो जाती है, तो बच्चा क्या करता है कि कभी बार तो बिना चबाए ही उसको भोजन को अंदर निगल लेता है
0: जी।
1: तो मैंने ये चीज़ देखी है कि ये गलत बात है, बच्चे को कभी भी खाना खाते हुए फ़ोन देना ये बहुत गलत बात है, ऐसा मदर्स को नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चों की पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बच्चे भोजन चबाते नहीं हैं अच्छे से, अच्छे से खाना खाते ही नहीं है। वो एक्साइटमेंट के दौरान, जैसे कोई एक्साइटमेंट सीन आ रहा है तो वो उसके दौरान बच्चे फटाफट चबा लेते हैं या ध्यान ही नहीं देते, और बच्चा क्या खा रहा है बच्चे को वो भी नहीं पता, बच्चे को उसका टेस्ट ही नहीं पता चलता चीज़ का कि हम खा क्या रहे हैं, कौन सी वेजिटेबल खा रहे हैं, और उसको कोई जानकारी नहीं होती। और इस चीज़ के बाद ये है कि एक तो बच्चे की पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है, दूसरा उसकी आंखों पे असर पड़ रहा है क्योंकि वो साथ में फ़ोन देख रहा है। इसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढे, या मतलब उनको देखना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे जो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अपनी आंखों का भी ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं कहीं ना कहीं उनकी सेंसेस उस टाइम पर डेवलप हो रही होती हैं, उनका शरीर फिजिकली तौर पर भी वो डेवलप हो रहे होते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, क्रिएटिविटी लेवल पर हर एक तरह से असर डलता है। क्योंकि जब खाना ही वह अच्छे से नहीं खाएंगे तो वो शरीर को लगेगा ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं आ पाएगी। तो अब प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई है कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है अगर हम बच्चों को फोन दिखाकर खाना खिला रहे हैं, तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? हम बच्चों को किस तरीके से खाना भी खिला पाए और वो बच्चे फोन की तरफ भी ना भागे?
1: देखिए, ये तो आपको पता ही है बच्चों को जो है कहानियां बहुत पसंद है
0: जी।
1: मान लो कि आप कोई सब्जी खिला रहे हो बच्चों को, आप उसी सब्जी के रिलेटेड कोई कहानी बना ले, जैसे उनको बोलें कि बेटा ये देखो ये ग्रीन कलर की वेजिटेबल है, ये अगर हम खाएंगे ना हमारे पास बहुत ताकत आएगी। उनको बताइए कि ये पालक की सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, एक तो उनको वेजिटेबल्स का पता चल जाएगा, और उनको आप मतलब इस ढंग से एक बाइट तोड़िए, उनको ऐसे कोई एरोप्लेन बनाइए, ये देखो बेटा ये एरोप्लेन आ रहा है, मुंह खोलो आप, ये एरोप्लेन आपके मुंह में जाएगा, यूं करके ऐसे। मैंने तो मतलब अपने बच्चों को बचपन में भी चीजें अगर खिलाई है ना तो इस ढंग से ही कहानियां बना बना के, और बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग वे से ये चीजें देखते भी और सुनते भी हैं। ये नहीं कि मोबाइल के द्वारा ही बच्चे एंटरटेन होते हैं, बच्चों को अपनी माँ की बताई हुई कहानियां भी बहुत पसंद होती हैं। तो इसी तरह से बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। आप बच्चों को किसी और ढंग से खाना खिलाएंगे, बच्चे वो ढंग सीखेंगे, अगर आप फोन देंगे तो बच्चे फोन वाला ढंग सीख जाएंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एज अ मदर बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं
0: जी। अब तो ये जैसे खाने की हमने बात कर ली कि खाना हम बच्चों को कैसे दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अब कुछ बड़े हो चुके हैं, बच्चों को आदत डल जाती है फोन की, अब वो आदत छुड़ाना भी मुश्किल है। तो खाने के बाद खाना हम कहानियों से खिला देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं फोन ही चाहिए, तो उस जिद को कैसे तोड़ें और बच्चों को किस तरीके से वहां से डाइवर्ट किया जाए, कैसे उन्हें वास्तविकता से परिचय दिलाया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो माओं को खुद फोन छोड़ना होगा। ये चीज मैंने एज अ टीचर भी देखी है कि मदर्स खुद फोन में बिजी रहती हैं, बच्चे भी तो वही चीज देखते हैं। अगर बच्चे मान लो स्कूल से घर आ गए हैं तो मदर्स जो हैं कभी पूछती भी नहीं है, बेटा स्कूल में क्या किया, मैम ने क्या करवाया, ये चीजें नहीं पूछेंगे। तो हमें सबसे पहले तो खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। और आप बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाइए, जैसे बच्चों को मान लो संडे के संडे छुट्टी होती है, आप बच्चों को बोलो बेटा हम ना आपको पार्क में लेके जाएंगे, तो बच्चे क्या होते हैं सोशलाइज भी होते हैं एक दूसरे के साथ, और जब वो पार्क में जाएंगे खेलेंगे कूदेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बच्चों के साथ खुद इन्वॉल्व होएं, बच्चों के साथ खुद खेलें। जैसे मेरे बेटे हैं तो जब मेरे को याद है वो छोटे थे ना तो उनको क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद था, तो मैं क्या करती थी मैं खुद उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। इवन की काइट फ्लाइंग में मैंने उनकी बहुत मदद की है, मैंने खुद अपने बच्चों को सिखाया है कि काइट कैसे उड़ाते हैं। इससे क्या होता है कि मदर्स और बच्चों का इंटरेक्शन भी बढ़ती है और बच्चे खुद ही अपनी बातें जो है मदर से शेयर करते हैं कि माँ हमारे साथ बच्चा बन रही है, हमारे जैसे ही खेल खेल रही है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इस ढंग से।
0: जी कहीं ना कहीं मदर और बच्चे की भी बॉन्डिंग बनती है, और आगे जाकर कभी बच्चा दिक्कत महसूस करता है अपनी जिंदगी में तो उसे आसानी होती है कि अपने पेरेंट्स से वो शेयर कर पाए और उसका सलूशन उन्हें मिल सके, क्योंकि पेरेंट्स को जितना एक्सपीरियंस हो चुका होता है लाइफ का, कहीं ना कहीं बच्चों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है।
1: जी
0: अब आप एक टीचर हैं तो आपके पास ऐसे पेरेंट्स भी आते होंगे जो काफी आपके इश्यू लेकर आते होंगे कि बच्चे जो हैं बात नहीं सुनते, बहुत जिद्दी हैं या बहुत ज्यादा शरारती हैं, कि उन्हें किस तरीके से समझाया जा सके, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत क्लेवर हो चुके हैं क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और टीचर्स के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना। तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से टैकल करते हैं और क्या आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से इस चीज को टैकल करें?
1: जी सेजल, ये तो है, बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं आजकल के, उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी क्लास में भी कुछ बहुत नोटी बच्चे हैं, टॉकेटिव भी हैं, और ऐसे जैसे बैठे बैठे ही कोई शरारत कर देते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो मैं इन बच्चों को टैकल करने के लिए क्या करती हूँ कि बच्चों को ड्यूटीज देती हूँ
0: जी,
1: कि क्लास में जैसे बेटा आपने जब सुबह आना है लाइट्स ऑन करनी है और डिस्पर्सल टाइम आपकी ड्यूटी है आपने लाइट्स ऑफ करनी है। तो ऐसे शरारती बच्चों को इसी तरह की क्लास की कोई ड्यूटी दे देती हूँ, तो बच्चे जो है ना अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि मैम ने हमें ड्यूटी दी है तो हमें कुछ स्पेशल होगा, तभी तो हमें ड्यूटी मिली है, ऐसे थोड़ी ना मिली है। कई बार बच्चों को क्लास को मॉनिटर बना देती हूँ कि बेटा आप आज से ना क्लास के मॉनिटर हो, तो मैं कभी भी बाहर जाऊं तो आपने क्लास को कंट्रोल करना है पीछे से। तो ये होता है कि एक तो उनकी शरारतों पे ध्यान नहीं जाता, उनकी शरारतें कम हो जाती हैं और मेरा भी काम हो जाता है। ऐसे बच्चों को ऐसे ही टैकल किया जाता है। ये चीज़ है कि जो बच्चे जितने शरारती होते हैं ना वो बच्चे पढ़ने में भी उतने इंटेलिजेंट होते हैं, ये चीज़ हमेशा मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। यही मदर्स को कहना चाहती हूँ कि आप भी घर पे बच्चों को कोई ना कोई टास्क दें, कोई काम दें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जिससे बच्चों को थोड़ा प्राउड फील हो और बच्चों की शरारतें जो है ना वो अपने आप कम हो जाएंगी।
0: साथ ही कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ की पर्सनैलिटी ही एक्सट्रोवर्टेड होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के, शाय पर्सनैलिटी के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। लेकिन आज के टाइम पर कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, उन्हें सोशलाइज करना सिखाना बहुत एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ आज के टाइम पर बाहर निकलना, दुनिया में रहना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो उस हिसाब से बच्चों का कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है?
1: देखिए, स्कूल में तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बहुत से टास्क होते हैं
0: जी।
1: जैसे कि सुबह की असेंबली होती है, हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं उसमें, जैसे राइम्स बोलना, कंपेयरिंग करना, छोटे छोटे काफी टास्क होते हैं। जैसे क्लास में ही बच्चों को कोई गेम खिलाई जाती है, और हम पेरेंट्स को भी ये चीज बोलते हैं कि बच्चों को आप घर में मोबाइल के साथ टचिंग नहीं रखें बच्चों की। जैसे छुट्टी होती है, पेरेंट्स को भी संडे सैटरडे वीकेंड में छुट्टी होती है, कहीं किसी दिन त्यौहार पे छुट्टी होती है, तो हम पेरेंट्स को भी ये बोलते हैं कि बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाइए, अपनी ऑब्जर्वेशन में रखिए और बच्चों को थोड़ा सोशलाइज कीजिए, बड़ों से बात करवाइए, ताकि बच्चे जो हैं अपने मन के भाव जो हैं वो शेयर करते हैं। ये चीज़ हमने ना रिसेस टाइम में बहुत देखी है कि जो बच्चे क्लास में शाये होते हैं ना कोई कहीं ना कहीं कोई डर होता है, लेकिन वो रिसेस के टाइम बच्चों की लैंग्वेज, उनकी टोन सब चेंज हो जाती है। तो उसी से हमें मतलब थोड़ा एस्टीमेट हो जाता है कि नहीं, ये शाई नेचर का नहीं है, इसकी हेसिटेशन इम्प्रूव करने की थोड़ी नीड है। तो एज ए टीचर हम उस पर फिर वर्क करते हैं
0: जी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे रिसेस टाइम पे अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि आसपास बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्तों के पास वैसे ही बच्चे एक फ्री एनवायरमेंट में रहते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो साथ ही अब और बातें भी करेंगे, हॉबीज के बारे में बच्चों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब वक्त है एक और म्यूजिकल ब्रेक का और आपकी मधुर आवाज में एक गीत का।
1: जी, एक और सॉन्ग है जो कि मुझे गुनगुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक ये सॉन्ग सब लोगों को पसंद होगा। जिन

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और कार्यक्रम चल रहा है घर परिवार। अभी हम बात कर चुके हैं आज के समय की परवरिश की, मोबाइल के योगदान की, और इससे बचा कैसे जा सकता है। अब वक्त है बात करने का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में और हॉबीज के बारे में। आज के समय में बच्चे मल्टीटास्कर बन रहे हैं और माता पिता भी उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैम, आपका क्या इस पर विचार है?
1: देखिए, हमारे टाइम में क्या होता था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोला जाता था, और हम भी ऐसा ही करते थे, पढ़ाई पे ही ध्यान होता था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे तो कोई ध्यान नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से आजकल मीडिया में सारा दिखाया जा रहा है, बच्चे इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे। तो ये अच्छी बात है, बच्चों को ऐसा करवाना भी चाहिए, लेकिन बच्चों को पूछ के, ये नहीं कि पेरेंट्स जो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ही बच्चों को कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे तो उसमें ये होगा कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, सिखाने के बावजूद भी बच्चा वो चीज़ नहीं सीखेगा। ये अच्छी बात है, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। घर के आसपास जो भी कोई एकेडमी कुछ भी हो, बच्चों को वहाँ पर भेजिए और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनमें पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि आपको भी सहूलियत रहे, आप आसानी से उसको छोड़ने जा सकें, लेने जा सकें।
0: और जैसे आज के टाइम पे कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू पहले का टाइम जो रहा, और ख़ास तौर पर ये कंपटीशन का प्रेशर कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर भी बना रहता है कि किस तरीके से अपने बच्चे को इस कंपटीशन में आगे बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों पर भी इसका असर पड़ता होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं यही बात आपको बोलूँगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए, उनको काम रहना चाहिए
0: जी।
1: मतलब ये नहीं कि अगर कोई दौड़ चल रही है तो उसमें आप चाहें कि आपका बच्चा भी दौड़े, ऐसा करेंगे तो आप खुद प्रेशर में रहेंगे, आप बच्चों को क्या संभालेंगे। इसीलिए आपको प्रेशराइज नहीं होना है, आपको प्रेशर में नहीं रहना है, ठंडे मन से सोचिए, आप बच्चे की पहले रुचि पूछिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग ही बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए, और बच्चे को हर मुश्किल में संभालने के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ही तैयार नहीं होंगे, बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, उसका सलूशन कैसे निकालेंगे? हाइपर नहीं होना आपको, आपको भी बच्चे के साथ ही जैसा बच्चा चाहे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ढलना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, बच्चे की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है। साथ ही पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा हॉबीज क्लासेस, चाहे वो विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो या एग्जाम्स के बाद जो वेकेशन आती हैं, उनमें चाहते हैं कि बच्चे कुछ नई चीजें सीखे। तो एज एन पेरेंट कौन सी वो उम्र बच्चे के लिए ठीक रहती है कि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ज्वाइन करें, या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सी एज हमें रखनी चाहिए कि उस एज में बच्चा जो है एक्टिविटी सीख सकता है या नई एक्टिविटी उसके लिए इंट्रोड्यूस करनी चाहिए?
1: जी देखिए, शौक का या हॉबी का उसको सीखने की कोई एज नहीं होती
0: जी।
1: ये तो बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप बच्चे को कब और कैसे हॉबी क्लासेस या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है वो ज्वाइन करवा सकते हैं। आप बच्चे पे कोई चीज़ थोपे ना, बच्चे जब ही खुद कहें तब आप उनको पार्टिसिपेट करवाइए, अपनी मर्जी से नहीं, और ना ही उन पे कोई प्रेशराइज करके उनको किसी चीज़ पे एक्टिविटी को अटेंड करने के लिए बोले।
0: आपकी क्लास में भी कई ऐसे बच्चे होंगे, जैसे हर साल नई क्लास आती है, नए बच्चे आते हैं, तो बच्चों का इतना पता नहीं होता कि कौन सा बच्चा किस लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकता है, किस चीज़ में अच्छा है। तो आप ऐसी क्या ट्रिक अपनाती हैं बच्चों को समझने के लिए या बच्चों की एक्टिविटीज़ जानने के लिए कि बच्चा किस एक्टिविटी में रुचि रखता है?
1: जैसे कि हमारे फुल वीक में एक डे ऐसा होता है जब हम स्टोरी टेलिंग, कोई कहानी सुनाते हैं
0: जी,
1: तो बच्चे बड़े खुश होके वो कहानी सुनते हैं। इसी तरह से मैं भी कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा आप भी कोई कहानी सुनाओ, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वो करके दिखाओ। तो बच्चे जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बच्चा कहता है मैम मुझे गाना आता है, मैं गाना सुनाऊँ, मैं डांस करके दिखाऊँ, मुझे एक अच्छी कहानी आती है, मुझे ये चीज़ बनानी आती है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की ये चीज़ बनानी आती है, मैम मुझे ड्राइंग करनी आती है ये। फिर हमें बच्चों से ऐसी टचिंग रखने से बच्चों का पता चल जाता है कि बच्चे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो पीटीएम पे हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है इस चीज़ को बड़े अच्छे से कवर करता है, तो आप इसको उस पर पार्टिसिपेट करवाइए। हम काफ़ी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इस चीज़ में। मैंने ये चीज़ देखी है कि इवन कि बच्चे जब रिसेस में खाना खाते हैं ना लंच ब्रेक में, तो मतलब मुझे ये इवन पता होता है कि बच्चे को ये वाली वेजिटेबल जो है ना ये पसंद नहीं है, ये बच्चे को ये वाली वेजिटेबल पसंद है। तो जब हम पीटीएम पे पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं तो मैं पेरेंट्स से कई बार ये शेयर करती हूँ कि आपका बेटा जो है या बेटी जो है वो ये चीज़ नहीं अच्छे उसको लगती, उसको ये खाने में ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि मैम आपको कैसे पता है, हमें तो बच्चे कभी ये चीज़ बताते नहीं है। तो मतलब टीचर जो है ना वो मतलब बच्चों के साथ अगर अच्छे से इंटरेक्ट करे तो बच्चे अपनी मन की बात आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स के साथ शेयर करते हैं।
0: कहीं ना कहीं आपकी बातों से अगर हम एक कंक्लूजन की कोशिश करें तो यही निकलता है कि बच्चों को जानने की जो चाबी है, उनके रहस्य का जो ताले की चाबी है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन ही एक ऐसी की है जिससे बच्चों को जाना जा सकता है, बच्चों को समझा जा सकता है, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसी वो क्या चीज़ें अपने मन में रखते हैं, किस इंटरेस्ट में रहते हैं, क्या शौक रखते हैं। हम मानते हैं कि क्लास में टीचर्स बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें करना भी जरूरी है ताकि बच्चों को हम जान सकें।
1: जी जी।
0: और एक मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि एज एन टीचर आप बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगी, और देश के विकसित होने में एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में टीचर की बहुत एक अहम भूमिका रहती है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपका अब तक कितना योगदान रहा?
1: मेरे खुद का 23 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब मैं बच्चों को कुछ नई नई बातें सिखाती हूँ। मेरे को अगर घर में भी कोई परेशानी हो या कुछ भी हो तो मैं स्कूल आके सब भूल जाती हूँ कि बच्चों के हंसते हुए चेहरे देख के, बच्चों से बातें करके मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कोई परेशानी थी। ये सोच लो कि 5-6 घंटे मैं तो दूसरी दुनिया में रहती हूँ कि अपनी दुनिया होती है। तो एज अ टीचर भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि टीचर्स अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करके। इवन टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं, तो एक टीचर अगर बच्चे को गाइड करे ना तो आई थिंक कि मदर से ज़्यादा वो टीचर की बात सुनते हैं। तो टीचर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ये बिल्डर्स हैं, देश को बनाने वाले टीचर्स ही हैं। तो जिसने भी ये चीज़ कही है ना, तो ये फैक्ट है कि टीचर अगर चाहे तो बच्चों को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना नहीं। अगर पेरेंट्स टीचर को सपोर्ट करें तो हम बच्चे को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं, उनकी मन की बात समझ सकते हैं। और मैं मदर्स को, आजकल की मदर्स को यही मैसेज दूंगी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और जितना रोल एक मदर का है ना उतना ही फादर का भी है। ये नहीं कि फादर अगर जॉब करते हैं तो फादर को बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। आप भी बच्चों से पूछिए कि आज स्कूल में बच्चे ने क्या किया, टीचर ने क्या करवाया, बेटा आपने डायरी लिखी है, आपने मैम ने कोई टेस्ट दिया है। दोनों का उतना ही रोल है जितना कि एक टीचर का है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़िए, जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको पाला है, मैं यही चाहती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स भी उतने ही प्यार से, उतने ही निकटता से अपने बच्चों के साथ संबंध बनाइए और उनकी मन की बातें समझिए, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे आपसे दूर ना हों।
0: और जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा?
1: मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी मिली, मैंने अपने मन की बातें जो हैं वो शेयर की यहाँ पे आके। और सेजल आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे, कहीं ना कहीं इन्होंने मेरा पुराना वक्त मुझे याद दिला दिया, अपने बच्चों के साथ उनका बचपन याद दिला दिया। और FM 90.0 रेडियो विदस्ता में आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मैं आगे भविष्य में भी ये चाहूंगी कि आप मुझे फिर से बुलाएं और हम इसी तरह से प्यार भरी बातें करें।
0: जी, और अब वक्त है आप सभी को एक गीत के साथ छोड़े चले जाने का। तो आखिर में बच्चों के लिए आप कौन सा गीत चाहेंगी जो आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहें और बच्चों को डेडिकेट करना चाहें?
1: रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, ये प्यारा सा गीत आप बच्चों को सुना दीजिए।
0: जी, अब मुझे भी दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो चला है अब मेरे भी जाने का और आपको छोड़े चले जा रहे हैं इसी मधुर गीत के साथ। अब मुलाकात होगी अगले अंक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
2: सुन लो, सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे।

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान थे श्रीमती दीप्ति बाला जी। प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सुपोरी।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो विदस्ता, सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: Yeah.

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
3: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
4: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
5: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
4: रेडियो वितस्ता
5: असले पौन पटाके
4: सुन मेरे दिलदारा 90.0 में।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का, अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखाओ।

हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शमी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को

देखकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मानी।

उन्होंने फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: अय्या सुकु सुकु
1: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी। अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
1: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीवित है।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: ही दालच महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया।
4: वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का।
3: बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
4: अब आगे क्या करने का सोचा है?
3: आगे का तो अभी फिलहाल
4: रे, अब उसे हरियाणा की किसी ITI में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को सवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 197 सरकारी व 180 प्राइवेट ITI में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
5: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
6: पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश करेंगे RJ किरणी।

एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता सुन रहे हैं आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं किरणी, आपके साथ सुपर हिट पुराने गानों की प्लेलिस्ट के साथ प्रोग्राम रेट्रो हिट्स में। आज के प्रोग्राम का टाइटल है चांद, और आज आपको मैं सुनाती हूँ चांद पर आधारित गाने जो आज भी उतने ही खूबसूरत और हर दिल अजीज हैं। चांद धीरे से मुस्कुराया है, चांद को कौन याद आया है।

0: चांदनी रात में चांद तेरे चेहरे से जलवा दिखाता है, सितारों के जहां सारा उसकी रोशनी में चमकता है।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: दिन में चैन नहीं ना होश है, रात में खो गया है चांद भी, देखो बादल के आगोश में।

कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पे शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन ना था वफा पे, तभी चांद पे तारों का पहरा है।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप हमें जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड, एडिट और निर्देशन रहा भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: उस पथ

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: नब्बे आशारिया सिफर एफ एम पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में दबकर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं, अलग अलग अलग अलग परछाइयों की

जो बरसों से बस गई है उसके सीने में जागती है तमाम रात, झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें, जो मुझे न सोने देती है न रोने देती है।

सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत सोपोरी आपके सामने में हूँ आज रूबरू FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आपके मन के मुताबिक कार्यक्रमों को तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं, और आशा यही है कि आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में कुछ राय रखते होंगे। आप जरूर अपनी राय हमारे तक पहुंचाएं, कोई सुझाव हो वो भी हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हम वही कार्यक्रम तैयार करें जो आप चाहते हैं। हम बात हमेशा वही करते हैं जो रखती हो आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही, पर हर दिन की तरह किसी खास विषय पर हम आपसे बात करते हैं कुछ समय के लिए, और साथ में आपके लिए लाते हैं कुछ पंक्तियां जो आप सभी को समर्पित है, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे, ताकि हम आपसे अपना एक कनेक्शन बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज 28 जुलाई है। आज का दिन हमारी सेहत और सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक यानी हमारे लिवर की सुरक्षा को समर्पित है। आज पूरा दिन और पूरी दुनिया विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी विश्व हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रही है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना और इससे बचाव के तरीके बनाता है। हमारी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर भी यही कोशिश है कि हम अपने सभी अंबाला वासियों तक हर एक बात को समय समय पर पहुंचाएं, ताकि हमारे सभी अंबाला वासी स्वस्थ रहे, जागरूक रहें और अपने जीवन शैली को और अच्छा बनाएं। ये खास दिन हर साल 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे चिकित्सा विज्ञान का एक बड़ा इतिहास है। आज नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग की जयंती है। ये वही महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके निदान व इलाज के लिए पहली वैक्सीन बनाई थी। उनके इसी अभूतपूर्व योगदान को सम्मान देने के लिए इस तिथि को चुना गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है हेपेटाइटिस और क्यों है जागरूकता जरूरी। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से वायरस के संक्रमण के कारण लिवर में होने वाली सूजन है। इसके 5 मुख्य प्रकार होते हैं, ए बी सी डी और ई। हेपेटाइटिस बी और सी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण सालों तक उभर कर सामने नहीं आते हैं और ये धीरे धीरे लिवर को नुकसान पहुंचाता रहता है। दूषित पानी, खराब खानपान और संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल इसके फैलने के बड़े कारण है। सही समय पर टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, साफ सफाई और समय समय पर जांच करा के इस बीमारी से पूरी तरह बचा जा सकता है। रेडियो वितस्ता आज इस मंच से आप सभी श्रोताओं से अपील करता है कि अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, जागरूक बने और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। श्रोताओं, सेहत के इसी जरूरी संदेश और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ अब समय हो चला है आज के इस सुहाने सफर को यहीं पर विराम देने का और आपसे विदा लेने का भी। आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन

नैना और कृष्णा, पूरे दिन आपके लिए स्टूडियो में रहकर आपके लिए प्रसारण तैयार करती हैं और आप तक पहुंचाती हैं। आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता की लहरों से बहता रहे अच्छे सेहत का पैगाम। वितस्ता की लहरों से बहता रहे अच्छे सेहत का पैगाम, सजती रहे ये महफिल हमारी, महकता रहे हर एक काम। लेकर सुनहरी यादें आज के इस सफर को देते हैं विराम, लेकर सुनहरी यादें आज के इस सफर को देते हैं विराम। हंसते मुस्कुराते रहिए और महकाते रहिए अपनी हर शाम, हंसते मुस्कुराते रहिए और महकाते रहिए अपनी हर शाम। यह था आज का टॉपिक और आज की पंक्तियां। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रम का विवरण जल्दी से देता हूं। कल 29 जुलाई 2026 बुधवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। 6 बजे भक्ति संगीत होगा और कल बुधवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, पेश करेंगे आरजे किरणी, संगीत का कार्यक्रम होगा। 8:30 पॉजिटिव स्टोरीज यानी सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 42 होगा, जिसमें हम कल दोहे आपको सुनाएंगे, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 पहलू और गीत कार्यक्रम एपिसोड 16, शीर्षक होगा वफा, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 10:02 पर फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम एपिसोड होगा, पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी और कल आपकी फरमाइश आर्काइव से हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और इस 30 जुलाई को हम नया कार्यक्रम शुक्रवार को प्रस्तुत करेंगे, आप सभी के लिए आपकी फरमाइशों पर आधारित होगा। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल, 7 बजे रेट्रो हिट्स कार्यक्रम होगा और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है लम्हे रुक गए। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010 नंबर, एक बार फिर 7056413010। उम्मीद है कि आज का ये प्रसारण आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ आपके दिल को भी सुकून दे गया होगा। कल फिर हाजिर होऊंगा मैं अपनी टीम के साथ इसी तरंग पर कुछ नई सकारात्मक बातों, मीठी यादों और सदाबहार गानों के साथ। अब तब तक मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। तो कल तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।